मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि यानी 7 जून सन 2026 सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार के बाद विविध भारती के कार्यक्रम।

0: अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब सुनते हैं आज का चिंतन। मानव जीवन का उद्देश्य है कि अपने मन, वचन और कर्म से दूसरों की मदद करना। जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है उसे तनाव नहीं रहता, उसे मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है और जीवन शांतिपूर्ण होता है। असल में जब मनुष्य दूसरों के लिए कुछ नेक कर्म या सहायता करता है, ठीक उसी पल सच्ची खुशी की शुरुआत हो जाती है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

हमें ये अनमोल मानव जीवन अनेक योनियों के बाद मिला है, हमें इसे व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, हर पल मानवता का ध्यान धरना चाहिए। प्रत्येक क्षण बेशकीमती है।

प्रातः की इस मधुर बेला में हमें अपना मन ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान का भजन करने से हृदय शांत रहता है और मस्तिष्क भी अपने सभी कार्यों को अधिक सुगमता से पूर्ण करता है। आइए लीन हो जाएं प्रभु भक्ति में।

हे जगत जननी माँ, ये समस्त संसार आपका परिवार है। हम सब आपकी ही संतान हैं। इस प्रातः की शांत बेला में आपका ध्यान अंतर मन को आनंदित कर देता है, नेक कर्म के लिए प्रोत्साहित करता है और जीवन को शक्ति प्रदान करता है।

हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप इस धरा के सबसे बड़े नीतिज्ञ हैं। आप ही सभी विधाओं, वेद शास्त्रों और कलाओं के मूल स्रोत हैं। इसीलिए आपको विशुद्ध विज्ञानमय विद्यापति और समस्त प्राणियों का ईश्वर कहा गया है। आप ही सभी जीवों के अंतिम विश्राम स्थान भी हैं। आपकी संहारित शक्ति ही जग का उद्धार करती है। आप ही संसार का कल्याण करते हैं।

प्रभु एक ऐसी सार्वभौमिक शक्ति हैं जो सर्वत्र मौजूद हैं। जो ईश्वर को जितना मानता है वो व्यक्ति उतना ही प्रभु को महसूस भी करता है। भगवान का भजन हमें सत्य मार्ग पर लेकर जाता है। वास्तव में ईश्वर की भक्ति केवल आपके द्वारा किए गए सुकर्म ही होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ईश्वर स्तुति का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम। भाइयों, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे कृषि में जल संरक्षण के बारे में। और इसका एक अर्थ ये है भाइयों कि जो जल है उसको हम किन किन तरीकों से बचा सके हैं और आगे आने वाले समय में हम अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन कैसे ले सकें। इसमें देखो भाइयों, एक ये भी है भाई, जो हमारी तरह तरह की जो सिंचाई की पद्धतियां हैं उनको हमने ध्यान में रखना है। जैसे आधुनिकता की हम बात करें तो उसमें एक ड्रिप सिंचाई है जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ये पौधे को की जड़ में एक छोटी ही ड्रिप लगाई जाए, एक नोजल लगाई जाए, उससे पौधे को बूंद बूंद करके, जैसे मुख्य रूप से हम बात करें जो सब्जी फसल है हमारी उनमें ये ज़्यादा कामयाब है, जो बागवानी कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो वहाँ भी हम जो पानी है वो बचा सके हैं। और इसका एक ये है भी, इसमें जो पानी का बहाव है उससे पानी बच जाए है और बहुत कम जो पानी में हम अच्छी पैदावार अपनी सब्जी फसलों से और फल वाले जो हमारे वृक्ष हैं उनसे हम फल का उत्पादन ले सके हैं। एक भाई फव्वारा जो सिंचाई विधि है ये भी एक इस तरह की विधि है जिसमें मुख्य तौर पे हम सीधा पानी ना दे के, फल का पानी ना बना के और छिड़काव करें हैं फसल के ऊपर। उससे जब ऊपर फसल के छिड़काव हो गया है और नीचे भी उसका जो पानी गिरा है और उससे जो ज़मीन है वो गीली हो गया है, उसी से जो पौधा है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे पानी ले ले है और उसमें भी जो पानी है हमारा कम प्रयोग में आवे है, ये भी एक पानी के बचाव की बहुत अच्छी विधि है। जहाँ तक हम बात करें भाई, देखो हमारे पास पानी बचाने के अनेकों ऐसे साधन हैं जिनका यदि हम ध्यान दें तो फिर हम बहुत कुछ उसमें पानी बचा सके हैं। और उसमें एक है कि भाई जो हम खेतों को लेवल करावा, हाँ, और आजकल तो भाइयों गोड़ी इस तरह आ रही हैं जो लेवल की गोड़ी हैं कि भाई वो खेत को पूरे के पूरे खेत को एक सारे ऐसा कर दे हैं कि भाई जितना हमने पानी उसके अंदर भरना है उतना ही पानी पूरे खेत के अंदर भरा है। पहले क्यों है, अगर दा एक जगह पर ज़्यादा पानी हो जाता, किसी जगह पर सूखा रह जाता, उससे हमारी फसल मर भी जाती और सूख भी जाती, दोनों काम होया कर दे। लेकिन अब जो आधुनिकता की हम बात करें तो उसमें जो ये गोड़ी है, जो लेजर लैंड लेवलिंग वाली जो गोड़ी है वो एक इस तरह की है भाई, उसमें पूरे के पूरे खेत को हम बिल्कुल समतल कर सके हैं और बराबर कर सके हैं, उसमें कोई भी कोना ऊंचा नीचा नहीं रहता, इसलिए हम ये भी लगा के और पानी की बहुत ज़्यादा बचत कर सके हैं। जहाँ तक बात आओ भाइयों, और भी हमारे पास साधन है, जैसे मल्चिंग की हम बात करें और नमी का जो संरक्षण है वो करें। मान लो हमने किसी भी चीज़ की खुदाई करी है और कुछ जो खरपतवार हमने निकाले हैं, उन खरपतवारों को, निकले हुए खरपतवार जो हैं उनको हम मल्चिंग के रूप में ले सके हैं, क्योंकि उसके जो पौधे की जड़ हैं उनके आसपास में यदि हम उनको ढक देंगे तो फिर जो नमी है वो बनी रहेगी और वाष्पीकरण जो जिसको हम कहें भाई, जिसमें जो पानी है, जो जल है वो उड़ है, उसको भी हम बचा सके हैं। जहाँ तक हम बात करें जो जैविक खाद है उसका उपयोग यदि हम करेंगे, ये भी एक खास बात है कि भाई इसमें जो जल धारण करने की जो अक्षमता है जमीन की वो अच्छी रहोगी और लंबे समय तक जो हमारे खेत के अंदर नमी है वो बनी रहोगी। बाकी इसमें भाई कुछ जल संरक्षण के और भी हैं जिनको हम उसमें खेत के जो किनारे हैं वो मेड़बंदी करके, जब बरसात हो उस समय पर अपने खेत में जितना भी हो उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रोकने की कोशिश करें। और एक है भाइयों, जो हमारा खेत है उसके आसपास हम कोई छोटा तालाब बना लें, ज़्यादा मान लो बरसात हुआ है तो उसके अंदर पानी हम इकट्ठा कर लें, जिस समय पर सूखे की स्थिति आवे उस समय पर हम इसे सिंचाई कर सकें। भाइयों देखो, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उसमें हम भारत सरकार की बात करें या हरियाणा सरकार की बात करें, ये जल संरक्षण के रूप को बढ़ावा देती हैं और हमारा जो पानी की बचत है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और आने वाला जो भविष्य है उसमें यही कहा जा सके है भाई, जल है तो कल है और जल को बचाना बहुत जरूरी है और किसान भाई इसका फायदा भी उठा सके हैं और अपना इस समय का भी उत्पादन बढ़ा सके हैं और आगे आने वाला जो समय है उसके लिए भी अपने उत्पादन की जो गारंटी है वो पूरी कर सके हैं। इसलिए जो किसान भाइयों, हमने जो जल का संरक्षण है वो करना बहुत जरूरी है, हम किसी भी सूरत में जल को व्यर्थ में ना बहाएं और जितनी जरूरत हो हमने पौधे के हिसाब से उसी हिसाब से जो नई नई तकनीक है उनका प्रयोग करके हम जो जल का संरक्षण करें और जल को बचाएं, तो भाइयों यदि हम जल को बचाएंगे तो आने वाला जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल होगा। भाइयों हम सब का दिन मंगलमय हो।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, उसके बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार और फिर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रम वंचितों को वरीयता। वार्ताकार होंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव। इन दोनों कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा संसार, विषय होगा विश्व खाद्य दिवस और साथ ही आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत युवा पसंद। कार्यक्रम घर आंगन का आनंद लीजिएगा। दोपहर 12:30 पर आज के विषय होंगे बिरसा मुंडा शहादत दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व महासागर दिवस, सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती और साथ ही आप सुनेंगे बातचीत शरीर की जांचों का महत्व और आवश्यकताएं। वार्ताकार होंगे विजय सिंह। फोन इन कार्यक्रम आपके अनुरोध पर इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। दोपहर 1:10 पर शाम 7:45 पर हम आपके लिए पेश करेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा रात्रि 8:25 पर। कार्यक्रम एक फिल्म से का समय रहेगा रात्रि 9:15। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, किस्सा बन देवी, गायक प्यारेलाल और साथी। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। आप सुनेंगे बातचीत गर्मियों के मौसम में मधुमक्खियों की देखभाल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर योगेश। शाम 7:00 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीण संसार का। विषय रहेगा जल संरक्षण और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। साथ ही आप सुनेंगे बातचीत ध्यान का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जानकारी देंगी डॉक्टर सीमा रानी। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। विषय रहेगा धान की बिजाई। सुबह 8:30 पर होगा साप्ताहिक आयोजन बाल कुंज। फिल्म संगीत के अंतर्गत सुनिएगा कार्यक्रम एक कलाकार सुबह 9:00।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं भाई चमनजीत सिंह।

परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे। जो परमेश्वर का नाम सिमरदा है वो जीवित है, जीवंदा है, और जो परमेश्वर का नाम नहीं जपदा वो तो मर खप जाता है। सात संगत बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। धन धन बाबा आनंद सिंह जी बचन करते सन,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थे भाई चमनजीत सिंह। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि सुरक्षित भोजन के महत्व और खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूक

जागरूकता बढ़ाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित और विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO के संयुक्त नेतृत्व में मनाया जाने वाला ये दिवस इस बात पर जोर देता है कि खाद्य सुरक्षा उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी की जिम्मेदारी है। और साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 का विषय है बोझ से समाधान तक, यानी हर जगह सुरक्षित भोजन। असुरक्षित भोजन से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य बोझ को समझने और बीमारियों की रोकथाम के लिए विज्ञान आधारित समाधान लागू करने पर केंद्रित है। हर साल 6 करोड़ खाद्य जनित रोगों के मामले सामने आते हैं। इस अभियान का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण में खेत से लेकर थाली तक खाद्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होता है। साथियों, हर मनुष्य का दिन सुबह उठते ही कुछ पीने से, कुछ खाने से शुरू होता है। हमें चाहिए कि सुबह का भोजन पूर्ण रूप से पौष्टिक हो और हर भोर का आगमन शुभ हो, स्वास्थ्य से भरपूर हो, बिल्कुल बावर्ची फिल्म के इस गीत की तरह।

बजा दैया, दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देनु चनैया, जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बहुत से लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जैसे किसान और खाद्य उत्पादक, खाद्य परिवहनकर्ता और भंडारण प्रबंधक, साथ ही खाद्य व्यवसाय संचालक और विक्रेता और नीति निर्माता और नियामक और उपभोक्ता भी, यानी ये सभी के सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। साथियों, खाद्य जनित रोगों से निपटने और विश्व स्तर पर नियामक उपायों को लागू करने की तात्कालिकता पर बल देता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। साथियों, खाद्य सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सच ही है कि आज का सुरक्षित भोजन ही कल हमें स्वस्थ जीवन देता है। यानी हम कह सकते हैं कि खेत से लेकर थाली तक हर कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित होना बेहद ज़रूरी है, और सुरक्षित भोजन पद्धतियों से अपने परिवार की रक्षा करना भी सभी का दायित्व है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर किस्म के संक्रमण को रोकें और स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। साथियों, जब भी बात खाने की आती है तो बड़ा सुकून देती है घर की बनी दाल रोटी।
1: समझो और समझाओ थोड़ी।

साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 इस बात पर जोर देता है कि खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। खाद्य जनित रोगों के वैश्विक बोझ को समझकर और साक्ष्य आधारित समाधानों का पालन करके सभी हितधारक जन स्वास्थ्य की रक्षा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस दिवस का उद्देश्य है कि खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। साथ ही सुरक्षित भोजन एक स्वस्थ, मजबूत और अधिक टिकाऊ दुनिया की ओर हमें लेकर जाता है।

साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी के लिए सुरक्षित और पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करता है, खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को भी रोकता है, एक सतत कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है और साथ ही खाद्य पदार्थों में संदूषण, स्वच्छता और उनके प्रबंधन संबंधी प्रथाओं के बारे में सभी को जागरूकता फैलाता है। साथियों, साफ, सादा, स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक, सुरक्षित भोजन का सेवन करें और दूषित और हानिकारक खाने पीने की चीज़ों से हमेशा दूर रहें, बेशक उनमें कितना भी प्रलोभन क्यों न हो।

साथियों, खाना पीना हमेशा पूरी तरह से सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कहते भी हैं कि खाना पीना अंग लगेगा, बाकी सारा जंग लगेगा। तो साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसी बात पर बल देता है कि सुरक्षित खाद्य प्रबंधन की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए और सरकारें, व्यवसाय और उपभोक्ताओं को मजबूत खाद्य सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणालियों के लागू करने को बढ़ावा देना चाहिए और हर तरह की खाद्य जनित बीमारियों से भरसक प्रयास होना चाहिए पूरी तरह बचने का। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
5: Collaborate closely to maintain security.
6: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
5: Full potential of our time.
3: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
7: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
8: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
3: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
9: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने 3री गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
3: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
10: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
3: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
11: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
3: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
12: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्ते की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of

0: सभी साथी मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।
0: आज मैं दमयवीर सिंह
2: और मैं आराध्या
0: आपका इस बालकुंज कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
2: अदम्या, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के ऊपर बताना चाहूँगा।
2: बताइए।
0: साधनी और टेस्टी ताज़ा और पौष्टिक भोजन हम सभी को अच्छा लगता है। सुरक्षित भोजन से हमारी सेहत अच्छी रहती है और हम बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस घोषित किया है। आज का सुरक्षित भोजन कल का स्वस्थ जीवन है। खेत से लेकर हमारी भोजन की थाली तक किसान, विक्रेता, सरकार और हम सभी की जिम्मेदारी है कि भोजन साफ, पौष्टिक और मिलावट रहित हो। साथियों, हमें खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना हमेशा याद रखना चाहिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखें। साथियों, हमें साफ पानी से धोकर ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। पीने का पानी हमेशा साफ या उबला हुआ होना चाहिए। तो साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का यही संदेश है कि हमेशा घर का बना पौष्टिक भोजन करें और बाहर के फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहें।
2: अदम्य, मैं भी इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ। जैसा कि आपने कहा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। यह दिन एक बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना और सुरक्षित भोजन को का उपलब्ध कराना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 का विषय है भोज से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में एक प्रस्ताव पर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया। खाद्य सुरक्षा के लिए हमें भोजन की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा ताज़ा और पौष्टिक आहार खाना चाहिए।
0: आराध्या, सही कहा आपने।
2: अदम्य, आप हमें विश्व महासागर दिवस पर कुछ बताना चाहेंगे?
0: हाँ,
2: बताइए।
0: कहते हैं, नीला है समुद्र हमारा, इसे साफ रखना है काम हमारा। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ये दिन महासागरों के महत्व और चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाता है। महासागर धरती के 70% से अधिक भाग कवर करते हैं। महासागर पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधताओं का घर है और दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोगों के लिए प्रोटीन का सहारा है। महासागर धरती की 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। साथियों, दुनिया में मुख्य 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। हमें महासागरों को साफ रखना चाहिए और प्लास्टिक या किसी भी किस्म का कचरा नहीं फैलाना चाहिए।
2: इनका मुख्य उद्देश्य महासागर यानी ओशन से मानव जाति को मिलाने वाले लोगों और पृथ्वी पर उनके महत्व तथा संरक्षण को बढ़ावा देना है। महासागर हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्से को कवर करता है और 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करते हैं और लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। विश्व महासागर दिवस हमें यह याद दिलाता है कि महासागरों को बचाना केवल एक दिन का काम नहीं है, बल्कि हमारी सत जिम्मेदारी है। हमें दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, कचरे को सही जगह डालना चाहिए।
0: सही कहा राध्या।
2: साथियों, अब सुन लेते हैं एक गीत।

0: गीत कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा दम्मे।
2: साथियों अब सुन लेते हैं CIET द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम जिसका शीर्षक है चतुर्मुर्ख।
3: और पहले कार्यक्रम का शीर्षक है
4: चतुर्मुर्ख।
5: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा? इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
6: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
5: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
7: अरे उठो,
8: अरे उठो,
5: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
7: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
8: अच्छा?
7: हाँ। परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, आहा, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: दूसरे ने कहा,
0: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बन गया।

0: चाकर थे, मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी।
1: ओ
0: लोग झुक

0: झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
1: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
2: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत?
2: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
4: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
2: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
4: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
2: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
4: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
5: खीर खा गया तुम?
1: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
6: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
4: नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
5: तुम झूठ बोलते हो।
6: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
4: जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
7: कार्यक्रम कैसा लगा साथियों?
8: बहुत अच्छा लगा।
9: साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ बिरसा मुंडा शहीदी दिवस के बारे में। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से आदिवासी समाज की दशा बदलकर एक नए समाज की स्थापना की। बिरसा मुंडा को आदिवासियों का भगवान और धरती आबा कहा जाने लगा। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने यह लड़ाई तब शुरू की थी जब वे 25 साल के भी नहीं थे। 20 मई 1900 को मुंडा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कोर्ट हाउस में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जेल लाया गया जहां उनका इलाज चला, लेकिन 9 जून को उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। और तब से 9 जून को बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
7: सही कहा राध्या।
9: अदम्य, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे?
7: हाँ, मैं खेल दिवस के ऊपर बताना चाहूंगा।
9: बताइए।
7: संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के खेलने और खेल

0: को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत पहली बार सन 2024 से की गई थी। खेलने के अतिगंत लाभ हैं। खेलों से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। खेलने से डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से समझ सकते हैं हम। टीम स्पिरिट और सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखते हैं। खेलों से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हम हर तरह के तनाव से दूर रहते हैं। खेल हमें जीवन में हार जीत का सामना करना सिखाता है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल या गैजेट से ज़्यादा समय खेल के मैदान में बिताइए। बताइए, आप सभी ऐसा करोगे?
1: जी अगर मैं, हम रोज खेलने जाएंगे। अब कर लेते हैं बच्चों से बातचीत। पहला साथी अपना नाम बताएं।
2: आयुष।
1: आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं?
2: एक कहानी
1: सुनाइए।
2: साथियों, क्या आप सभी ने सोचा है कि हवा और सूर्य में कौन ताकतवर है? एक बार हवा और सूर्य में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि दोनों में से कौन अधिक ताकतवर है। अंत में वे इस बात को सिद्ध करके दिखाने पर शांत हो गए। देखो, एक राहगीर आ रहा है। हम यह देखते हैं कि हम में से कौन इसके द्वारा उड़े हुए वस्त्र को उतरवा सकता है। सूर्य ने कहा। हवा मान गई और पहले उसने अपनी बारी मानी। वह इतनी जोर से चल सकती थी, चलती गई। इसके फलस्वरूप राहगीर ने अपनी ओढ़े हुए वस्त्र को अपने चारों ओर और अधिक से कस लिया। इसके बाद सूर्य की बारी थी। पहले वह बहुत ही शांत स्वभाव से चौंका। इससे राहगीर ने अपना वस्त्र ढीला कर लिया। सूर्य अपनी चमक धीरे धीरे तेज करता गया। राहगीर को गर्मी लगने लगी। शीघ्र ही उसने अपना ओढ़ा हुआ वस्त्र उतार डाला और उसे अपने थैले में रख दिया। हवा ने इस कहानी से अपनी हार स्वीकार कर ली। तो साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि बल की तुलना में धैर्यता से बड़ा कार्य भी हो सकता है।
0: बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने आयुष।
1: आज हमारे साथ नया साथी है। साथी, अपना नाम बताएं।
3: मेरा नाम लावण्या है।
1: आज आप हमारे लिए क्या लाई है?
3: एक कविता
1: सुनाइए।
3: क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है? क्यों खोजते हो औरों में जब तेरे मन ही दर्पण है? दुनिया बस एक दौड़ नहीं, तू भी अश्व नहीं है धावक। रुक कर खुद से बात तो कर ले, अंतर मन को शांत तो कर ले। सपनों की गहराई समझो, अपने अंदर की अच्छाई समझो। स्वधाई की आदत डालो, जीवन को तुम खुलकर जी लो। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है तो पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो। जीवन का ये रहस्य समझ लो और खुशियों से तुम नाता जोड़ो। धन्यवाद।
1: लवण्या, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई।
0: सोनी, आप क्या सुनाओगे?
4: आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी।
0: सुनाइए।
4: एक गांव के किनारे बसी अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक ज्ञानी ऋषि रहता था। वह अक्सर देर रात तक जाकर शास्त्र का अध्ययन किया करता था। एक रात चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। ऋषि मिट्टी के एक छोटे से दिए की रोशनी में एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ने में मग्न था। पढ़ते पढ़ते जब आधी रात बीत गई और उसकी आंखें थकने लगी तो उसने ग्रंथ को एक तरफ रखा। उसने आगे बढ़कर एक ही फूंक में उस छोटे से दिए को बुझा दिया ताकि वो सो सके। दिया बुझते ही झोपड़ी में अंधेरा नहीं हुआ, बल्कि एक अद्भुत दृश्य सामने आया। जैसे ही दिया की लौ शांत हुई, झोपड़ी की खिड़की से पूर्णिमा के चांद की शीतल दोधिया रोशनी भीतर आ गई। देखते पूरी कुटिया चांदी की तरह चमक उठी। ऋषि हैरान रह गया। उसने सोचा, कितने आश्चर्य की बात है, नन्हे से दिए की रोशनी ने इतने विशाल चंद्रमा के प्रकाश को अब तक झोपड़ी के बाहर रोक रखा था। जब हमारे भीतर का अहंकार और क्रोध शांत होता है, तभी मन में ईश्वर की सच्ची शांति का वास होता है। धन्यवाद।
0: सलोनी, कहानी बहुत अच्छी थी।
1: साथियों, अब सुन लेते हैं एक और गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।

साथियों, इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए सभी साथी मिलकर बोलेंगे जय हिंद।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। फिल्म संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी हम हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं चंद खूबसूरत नगमे और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें। आइए आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मधुर आवाज की सौम्य शालीन मलिका सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर के रूप में भारतीय सीने संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी मुरझा गया। सुमन जी ने 89 की उम्र में आखिरी सांस ली, तारीख 31 मई सन 2026। साथियों, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी महान और युगांतकारी पार्श्व गायिकाओं के दौर में भी सुमन कल्याणपुर ने बिना किसी शिकवे शिकायत के अपने गायन की स्वर्ण रेखा को यथासंभव दमकाए रखा। आज उन्हीं के गाए नगमों का आनंद लीजिएगा।

0: रात्रि बलंगवा घड़ी घड़ी देखो नजवा।
1: साथियों, सुमन कल्याणपुर की खूबी और खामी यही थी कि उनकी आवाज़ गान सरस्वती लता मंगेशकर से काफ़ी मिलती थी। उनकी नाजुक मंद हवा के झोंके सी मिठास भरी आवाज़ सुनकर कई बार धोखा होता था कि ये गीत लता जी ने गाया है या सुमन कल्याणपुर ने। बावजूद समकालीन होने की इस कठिन चुनौती के, सुमन कल्याणपुर ने कई ऐसे गीत गाए जो सिर्फ उन्हीं के खाते में क्रेडिट होंगे। मसलन, बुझा दिए हैं खुद अपनी हाथों मोहब्बत के दिए जला के, फिल्म शगुन, मेरे महबूब न जा आज की रात न जा, फिल्म नूर महल, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, फिल्म रेशम की डोरी, या नन्ही सी परी मेरी लाडली, फिल्म दिल एक मंदिर, या न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, फिल्म बात एक रात की, या बात कर लीजिएगा गीत यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। साथियों, सुमन कल्याणपुर जी की याद में उन्हीं के गीत गाए से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

साथियों, सुमन कल्याणपुर की मुश्किल यही थी कि उन्हें लता मंगेशकर रूपी सूर्य की छाया में ही रहना था और बढ़ना था। ये काफी हद तक वटवृक्ष के नीचे बसंत को खिलाने के जैसा था। स्वयं लता जी के सक्रिय रहते, उन जैसी आवाज जिसमें सुमन जी की आवाज में महज 19-20 का फर्क हो, को साथ लेकर आगे बढ़ना, यानी 24 कैरेट सोने के साथ 22 कैरेट सोने के स्वर्णाभूषण को एक ही पलड़े में रखने जैसा था। सुनिए आप उन्हीं की गीत में, ये आवाज में ये गीत।

साथियों, ये निर्विवाद है कि सुमन जी और लता जी के स्वर की बुनावट और गायन शैली में इतना महीन फर्क था कि अच्छे अच्छे लोग भी धोखा खा जाएं। सुमन जी और लता जी के आवाज़ की रेंज का बहुत सूक्ष्म अंतर था और वो तार सप्तक में जाकर महसूस होता था। इस अनोखे स्वर साम्य के बावजूद सुमन कल्याणपुर और लता जी में कहीं कोई सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि सुमन कल्याणपुर ने 1954 में जब हिंदी फिल्म

में गाना शुरू किया तब लता जी ने सीने जगत में दिग्गज पार्श्व गायिका के रूप में अपना स्थान बना लिया था और खुद सुमन कल्याणपुर अपने कॉलेज जीवन में मंच से लता जी के गीत गाती थी और उनकी मुरीद थी। साथियों, दोनों की उम्र में भी 8 साल का अंतर था। खुद सुमन कल्याणपुर ने भी कभी अपने को लता जी का प्रतिस्पर्धी नहीं माना, लेकिन उनकी आवाज सुनकर समीक्षकों ने उन्हें प्रति लता कहा। चूंकि लता जी के सुरों का जलवा अपने शबाब पर था, इसीलिए सुमन कल्याणपुर के हिस्से में वो ही गीत आते थे जो लता जी या तो गाने से मना कर देती थी या फिर उनकी तगड़ी फीस के चलते छोटे संगीतकार लता जी की जगह सुमन को ले लेते थे। पेश है आपके लिए ये नगमा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कहते हैं कि लता मंगेशकर 60 के दशक में प्रति गाना 100 रुपए चार्ज करती थी, जो उस समय के हिसाब से बड़ी रकम थी। साथियों, 60 के दशक के अंत में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच पार्श्व गायकों को रॉयल्टी देने के मामले में एक बहुचर्चित विवाद हुआ था, जिसके कारण दोनों ने कुछ समय के लिए गाना बंद कर दिया था। तो ऐसे में संगीतकारों ने लता की आवाज़ की पूर्ति सुमन कल्याणपुर की आवाज़ से की थी। साथियों, सुमन जी ने सबसे ज़्यादा 137 गाने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए थे, जिनमें दिल एक मंदिर मशहूर गीत था, या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर फिल्म ब्रह्मचारी, या नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे फिल्म जब जब फूल खिले आदि अनेक गीत थे। मोहम्मद रफ़ी के साथ ही सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये नगमा आपकी नज़र।

साथियों, जब बात आती है सुमन कल्याणपुर के करियर के पहले गीत की, तो आपको बताते हैं कि उन्होंने अपना पहला फिल्मी गीत जाने माने पार्श्व गायक तलत महमूद के साथ 1954 में फिल्म दरवाज़ा के लिए रिकॉर्ड किया था। लेकिन सुमन जी को शोहरत 60 के दशक की शुरुआत से मिलनी शुरू हुई थी। कई बड़े बड़े संगीतकारों ने उनकी आवाज़ का अपने कंपोजिशन में बेहतरीन उपयोग किया। साथियों, सुमन कल्याणपुर ने हिंदी के अलावा मराठी में भी बहुत से कालजे गीत गाए हैं। खासकर उनके गाए कई गैर फिल्मी भावगीत मराठी सुगम संगीत की अनमोल धरोहर हैं। इसके अलावा बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं के गीतों को भी उन्होंने अपना स्वर दिया। साथियों, मोहम्मद रफ़ी के साथ उनका एक और धड़कता हुआ गीत आपकी नज़र करते हैं, जो आज भी हर दिल में अपनी जगह बनाए हुए है।

साथियों, सुमन कल्याणपुर के व्यक्तित्व की खूबी यही है कि एक उत्कृष्ट पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने अपनी साधना खामोशी के साथ लगातार जारी रखी, बिना किसी भी दौड़ में शामिल हुए। एक सच्ची कला साधक के रूप में सुमन कल्याणपुर समय की सलेट पर अपनी रेखा को बड़ी करती रही। खास बात यही है कि उनकी आवाज़ लता जी जैसी होते हुए भी वो लता मंगेशकर की नकल कभी नहीं करती थी। वैसा ही माधुर्य, वैसी ही गहराई और वैसा ही जज्बा। भले ही सुनने वालों के कानों को धोखा हो जाए, पर अगले ही क्षण वो सावधान हो जाएं कि ये लता जी की आवाज़ नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर की है। साथियों, हर साल एक दिन पूरे देश की धड़कनों में एक साथ गूंजता है उनका एक गीत, जो अपने भीतर समेटे है अनुपम प्यार, दुलार और अपनापन।

साथियों, भाई बहन के अनुपम रिश्ते पर आधारित ये गीत अद्भुत है और इसके भाव दिल को छू लेते हैं। मधुर प्यार भरी गीतों के लिए सदा याद आती रहेंगी सुमन कल्याणपुर। साथियों, कहते हैं लता जैसी आवाज़ की धनी होते हुए भी सुमन जी और लता जी की सीधी भेंट सिर्फ 5 या 6 बार ही हुई थी, और वो भी बहुत ही थोड़े समय के लिए। सुमन कल्याणपुर अपनी सफल संगीत यात्रा का श्रेय अपने पिता शंकर राव हेमाड़ी और पति को देती थी। कहते हैं कि अपनी पत्नी के करियर के लिए उनके पति रामानंद कल्याणपुर ने अपने बिजनेस को भी दांव पर लगा दिया था। उन्हीं की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, पार्श्व गायन की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सुमन जी ने जो कुछ भी गाया हमेशा दिल से गाया। शोहरत की बुलंदियों की अग्रिम पंक्ति में जगह न मिलने का गम

के किसी कोने में भले रहा हो, लेकिन वो कभी जुबां पर नहीं आया। सुमन कल्याणपुर को पार्श्व गायन में उनके विशिष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से विभूषित किया।

साथियों, सुमन कल्याणपुर देश दुनिया के हर संगीत प्रेमी के दिल में सदा बसी रहेंगी, महकती रहेंगी अपनी सलूनी शख्सियत के साथ। साथियों, 31 मई सन 2026 को ये फूल मुरझा गया, ये मीठा उज्जवल दिया बुझ गया। उन्हें आकाशवाणी परिवार की ओर से सलाम, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक कलाकार। हमारी आज की कलाकार थी सुमन कल्याणपुर। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होर्मूज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालेंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से मात दी। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबेली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय हिस्सों केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आज लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister also directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with a ruthless approach. The National Testing Agency has refuted claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, the NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
4: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to follow prey to the fraudulent solicitations. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighbouring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia and Canada. It noted that a beneficiary of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana pays ₹642 for a 14.2 kg LPG cylinder after receiving a direct benefit transfer of ₹300 on the first four refills annually, while the retail price for a general consumer in Delhi stands at ₹942. Notably, the price of domestic LPG cooking gas has been increased by ₹29 per 14.2 kg cylinder. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post 2015 earthquake after meeting with his visiting counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI India and the National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a memorandum of understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for co-creating the national digital infrastructure for a voice-first language translation platform for Nepal. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has said that BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state such as Dakshineshwar and Kali Ghat temples. He said work has already commenced to elevate the Ganga Sagar Mela to international standards, while facilities at prominent religious landmarks like Dakshineshwar and Kali Ghat will be significantly upgraded. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over coastal Karnataka, Kerala and Mahi today. The weather agency also predicted thunderstorms and lightning today in places over Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Telangana, West Bengal and Sikkim. Heatwave conditions are expected today in parts of coastal Andhra Pradesh and Odisha. Warm night conditions are likely to prevail over Odisha tonight. In men's cricket, India were 398 for 3 in their first innings on day 2 of one-off test against Afghanistan in New Chandigarh when reports last came in. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century. In SAFF Women's Championship 2026 final, India defeated the defending champions Bangladesh 3-1 to win the title for a record 6th time. The match was played in Madgaon, Goa yesterday. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 और 7 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारी पहली सभा यहीं संपन्न होती है। दोपहर 12:30 पर हम फिर उपस्थित होंगे अपनी दूसरी सभा के साथ। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। अब अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 268.64 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ जोन IR पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन सुन रही सभी श्रोता बहनों को रेनू का प्यार भरा नमस्कार। स्वाति, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को और रेनु जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और सभी बहनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, हमारे टॉकर भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: परिचय भी करवा देते हैं। श्री विजय सिंह जी जो कि सिविल अस्पताल रोहतक में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर हैं, तो महिलाओं से जुड़ी समस्याएं, महिलाओं के शरीर में होने वाली बीमारियाँ या पुरुषों में भी होने वाली बीमारियाँ, उनकी नियमित जाँच कब और कैसे करवाई जाए, तो पूरे कार्यक्रम में आप हमारे साथ रहेंगे। आपका स्वागत
2: जी।
1: देखिए, आज है 7 जून की तारीख रेणु जी, और इस दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। हम अगर खाने की बात करें तो भोजन हमारे जीवन की एक बहुत ही अनिवार्य ज़रूरत है, लेकिन यह भोजन किस प्रकार का हो, दूषित ना हो, सही तरीके से पकाया गया हो और हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये लक्ष्य है आज का दिन मनाए जाने के पीछे। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिसंबर 2018 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था, और इस वर्ष का थीम है खेत से थाली तक सुरक्षित भोजन के महत्व को समझाना।
0: ये तो एक बहुत ही आम बात है स्वाति, कि जो भी अन्न हम उपजाते हैं, हमारे किसान उपजाते हैं, कितनी मेहनत उसमें लगती है और तब जाकर उनकी तपस्या पूरी जब फसल सामने आती है तब वो कितना खुश होते हैं। और अगर वो ख़राब चली जाए, मौसम के किसी कोई ख़राब मौसम हो गया या कोई और विपत्ति आ गई, वो ख़राब हो जाए, तो कितना बड़ा नुकसान है ये। तो इसीलिए खाद्य सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी, जलवायु परिवर्तन के साथ पर्यावरण में आने वाले बदलाव के कारण अगर किसी भी तरह की ऐसी हम कहते हैं ऊंच नीच आती है फसलों के संबंध में, जैसे रेणु जी बता रहे हैं कि भंडारण सही तरीके से नहीं हुआ है या फसल सही नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से एक सही रास्ता पकड़ें, साफ सफाई के साथ साथ भंडारण भी उचित तरीके से हो और साथ ही साथ हर व्यक्ति तक भोजन पहुँचे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आज का दिन मनाए जाने के पीछे यही उद्देश्य है।
0: हाँ, और इसके लिए हमारी सरकार हर वो उपाय कर रही है कि हमारा जो भी अन्न हमारे किसान उपजाता है वो उसकी सुरक्षा हर तरह से हो पाए।
1: जी, खाने के बाद एक अगली जो खास ज़रूरत है वो हमारे लिए है जल की आवश्यकता। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितना भी जल है उसमें से बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो पीने के जल के रूप में उपलब्ध है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महासागरों ने घेरा हुआ है।
0: हाँ स्वाति, जल तो जल है और अब हर तरफ जल का ही जिक्र है, क्योंकि जल है तो कल है। तो सिर्फ पीने वाला पानी या पोर्टेबल वाटर जो हम कहते हैं, सिर्फ वो ही कम नहीं हो रहा है, बल्कि महासागर भी हमारे अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि महासागरों में देखो कितने ही जीव जंतु पनप रहे हैं, जो कि महासागर के अंदर जो भी उनको जो भी मिल पाता है, शैवाल हैं या जो भी होता है
1: वो,
0: हाँ वो सब, तो अगर वो नहीं होगा, अगर हमारे महासागरों का जल प्रदूषण

0: जीवित हो जाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो इससे हमारी जो वो तंत्रिका तंत्र है पूरा समाज का, पूरे संसार का, या हम कहें दुनिया का, वो खराब हो जाएगा।
1: देखिए इसमें एक बहुत ही खास बात यह है कि अब हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वातावरण में, उसका हम बहनों को बता दें कि 30% हिस्सा महासागरीय
0: में प्रदान करते हैं,
1: वो अवशोषित करते हैं,
0: अवशोषित करते हैं, और हमें उससे फिर वो जो हमारे लिए ग्रीनरी पैदा करते हैं आसपास जो होता है वो हमें
1: पारिस्थितिक संतुलन की बात हो जी, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो महासागरों की वजह से टला हुआ है, और यही कारण है कि 8 जून को मनाया जाएगा विश्व महासागर दिवस। और 9 जून की तारीख भी खास है, अगर हम अपने देश की तरफ लौटते हैं और बात करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने किसी न किसी रूप में शहादत दी देश के लिए, और आज हम आजादी की सांस जो ले रहे हैं वो उन्हीं की वजह से ले रहे हैं।
0: ऐसे
1: जी हाँ,
0: बिरसा मुंडा
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा, बिरसा मुंडा शहादत दिवस जो है वो 9 जून की तारीख को मनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि बिरसा मुंडा एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे, लेकिन बावजूद इसके उस
0: पूरे समाज के लिए उन्होंने जो किया,
1: उन्होंने बहुत कुछ किया। और देखिए अक्सर हम कहते हैं कि सिर्फ आज़ादी की बात करें हम, लेकिन बिरसा जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हम कह सकते हैं आदिवासी समाज ही नहीं, उस समय के जितने भी लोग थे भारतीय, छोटा नागपुर क्षेत्र से जो इनका संघर्ष शुरू हुआ था उसमें इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की समानता, और साथ ही साथ जल जंगल और जमीन की रक्षा, इस पर इन्होंने जोर दिया।
0: और भगवान, उन्हें भगवान माना जाता था।
1: बिल्कुल,
0: वहाँ जो उनके आदिवासी समाज है उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता और या भगवान के नाम से पूछता है। और वो किस लिए? भगवान हम किसको मानते हैं? जो हम सब की रक्षा करता है
1: जी।
0: तो इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया कि उन्होंने हर मतलब सिर्फ एक जाति के बारे में नहीं, उन्होंने समाज के हर व्यक्ति के बारे में, हर जातियों के बारे में सोचा और उसके उत्थान की बात की। तो इसीलिए
1: आज तो हम यही कर सकते हैं कि समाज के वो वर्ग जो उपेक्षित है, जो कहीं ना कहीं अभाव से जूझ रहा है, उसकी हम सहायता कर सकते हैं। और इस आज़ादी का फायदा इसी में है कि हम खुद भी खुश रहें और जितने भी उदास चेहरे हैं उन पर खुशी की लहर लाएं।

0: तो बहनों, ये हमने गीत सुना और ये गीत हमारे जो मेहमान हैं उनके पसंद का भी गीत था, और हमने ऑफ द माइक उनसे पसंद उनकी पूछ ली थी कि हम कौन सा गीत पसंद करते हैं, तो हम उनको सुनवा भी सकते हैं। तो हम आपसे अब मुखातिब होते हैं विजय जी अभी, कि हमारा बातचीत का विषय रहेगा शरीर की जांचों का महत्व और आवश्यकताएं। यानी आजकल के समय में हम देखते हैं कि देखिए कितनी तरह की बीमारियां हैं, और कितनी तरह के हम बीमारियां स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं बहुत सारी, और हम कितने बिजी हैं कि अपने शरीर का, अपनी सेहत का ध्यान हम नहीं रख पाते हैं। और जब कोई हमारा शरीर इंडिकेट करता है तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, और फिर डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप ये जाँच करवाइए, ऐसे करवाइए। तो कई बार ये भी फील होता है कि क्यों ना हम कुछ जांचें अपने आप करवा लें पहले से, कि हमारा शरीर कह रहा है, ये बोल रहा है, तो हम आजकल इतनी लैब्स खुली हुई हैं तो क्यों ना हम वहाँ जाके करवा लें। बट एज अ ले मैन पता नहीं होता कि क्या टेस्ट करवाए जाएं और कौन से टेस्ट का क्या महत्व है। तो इसी से संबंधित कुछ बातें हम आपसे जानना चाहेंगे और बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम यही कि कौन से टेस्ट आमतौर पर होते हैं जो कि करवाए जाते हैं टेस्ट में, आप हमें ये बताइए।
1: जी मैम, सबसे पहले तो आकाशवाणी टीम को, आपके सभी श्रोताओं को दोपहर की मेरी तरफ से राम।
0: जी
1: मैम, रूटीन में आजकल सभी लोग अवेयर हैं डॉक्टर के कहने से पहले, या फिर जब भी किसी को यूं लगता है कि भाई कोई मेरे को जांच कोई करानी चाहिए कुछ सिम्टम्स के हिसाब से, आजकल तकरीबन क्या चला हुआ है कि वोल बॉडी चेकअप जो होता है ना,
0: जी
1: पूरे
0: जी
1: शरीर की जांच, वो लोग सभी अब करवा रहे हैं।
0: उसमें क्या रहता है?
1: उसमें मैम कई सारे तरह के टेस्ट हैं, जैसे कंप्लीट हीमोग्राम है, उसमें आपका HB कितना है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति कितनी है, अलग अलग तरह के सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट काउंट वगैरह कितना है, अगर कोई एनीमिक है तो वो किस टाइप का एनीमिया, उसे पता चल जाता है मैम। 8-10 टेस्ट लीवर के होते हैं कि आपका लीवर का क्या है,
0: जी
1: कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं है। गुर्दे के टेस्ट होते हैं जिसको KFT बोलते हैं,
0: जी जी
1: तो गुर्दा आपका ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या होता है कि हम पहले ही अगर इसका टेस्ट करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टाइमली। उसमें फिर LFT हो गया, KFT हो गया, एक लिपिड प्रोफाइल जो होता है, लिपिड प्रोफाइल में जो आजकल सभी लोग अवेयर हैं, कैलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट अटैक वगैरह की किसी को दिक्कत ना हो, उसके लिए लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराते हैं। उसमें थायराइड होता है, हार्मोन का टेस्ट है थायराइड का, विटामिन D होता है, विटामिन B12 होता है, अगर किसी को विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहना, अनएनर्जेटिक फील करना,
0: जी
1: इस
0: जी
1: टाइप का। तो वो सारे के सारे लोग जो स्ट्रेस की वजह से या काम की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि मैं अनएनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, तो ये सारी जांच करा लेनी चाहिए। विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से मूड स्विंग करने लग जाता है, अनएनर्जेटिक फील करता है, मेल्स में इवन वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे भी इफेक्ट डालता है।
0: जी
1: तो ये विटामिन D, विटामिन B12, थायराइड प्रोफाइल, आयरन प्रोफाइल,
0: जी
1: HbA1c, जो 3 महीने का कंट्रोल। कई बार क्या करते हैं कि हम यूं तो कह देते हैं कि वो मेरे को यूं देखा देखना चाहिए कि मेरे को शुगर तो नहीं है,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: हम
0: बैठे
1: लोग
0: बैठे के जो
1: बैठे बैठे
0: मुझे मतलब ख्याल आए कि शुगर तो नहीं है,
1: हाँ जी
0: या मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है,
1: हाँ
0: या मुझे कुछ भी
1: हाँ
0: मतलब।
1: अब सपोज करो हम सारे बैठे हैं, कहते हैं मैंने तो टेस्ट कराया, तो कहते मुझे भी कराना चाहिए, कभी मेरे को शुगर तो नहीं हो गई
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: वो क्या
0: देखा
1: कर,
0: देखी आजकल
1: हाँ
0: काफी
1: देखा
0: हो रहा
1: देखी
0: है।
1: होगी, तो हम शुगर तो टेस्ट करा लेते हैं।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: वो हमने सपोज करो हमने अभी शुगर टेस्ट करा, हमारा शुगर का टेस्ट नॉर्मल आ गया,
0: जी
1: तो एक HbA1c होता है, वो 3 महीने का प्रीवियस, पिछले 3 महीने का कंट्रोल बताता है कि आपके शरीर पे कोई ऐसा तो नहीं, कभी शुगर ने फ्लक्चुएट किया हो, अब तो नॉर्मल है, कभी फ्लक्चुएट किया हो और उसने कोई बुरा असर डाल रखा हो,
0: क्या नाम
1: तो
0: बताया
1: उसको
0: आपने?
1: HbA1c बोलते
0: एच
1: हैं,
0: बी ए वन
1: सी,
0: सी
1: हाँ जी। तो ये 3 महीने का प्रीवियस कंट्रोल बताता है,
0: जी
1: तो वो भी उसके अंदर होता है। यूरिन एग्जाम होता है कि उसमें पता चल जाता है, अगर कोई मेल है तो उसको, अगर सपोज करो कोई बिलो 30 है, कोई UTI वगैरह तो नहीं है, अबव 40 है, तो उसे ये पता चलता है RBC वगैरह तो नहीं आ रहे, उसको प्रोस्टेट वगैरह की दिक्कत तो नहीं है। फीमेल्स है, उसको UTI का पता चल जाएगा यूरिन एग्जामिनेशन से। अगर कोई फीमेल्स किसी को कहती है कि मेरे पैर वगैरह में कोई दिक्कत है, सॉरी टांगों में दर्द वगैरह रह रहा है, तो
0: जी
1: एपिथेलियल सेल्स वगैरह उसमें आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से उसको पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे उसमें CRP भी होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, जो एक वो हाथ पैरों में कभी पेन रहना स्टार्ट होगा तो वो इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। और
0: जी, ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि, पर मतलब ये बहुत अच्छी बात है, पर एक लेमैन को ये सब बातें पता नहीं चलेंगी।
1: हाँ जी
0: मतलब कौन से टेस्ट हैं जो महिलाओं को कुछ कुछ दिन के अंतराल के बाद करवा लेने चाहिए, जो कुछ आप सजेस्ट करेंगे?
1: जी मैम,
2: विजय जी ये जरूर बताइए कि किस एज ग्रुप में महिलाएं सचेत हो जाएं कि करवाने अनिवार्य हैं ही,
0: हाँ मतलब
2: कौन कौन से करवाएं, आवश्यक टेस्ट और किस आयु सीमा के बाद या
0: उनका
2: किस आयु
0: शरीर
2: में?
0: जैसे इंडिकेट कर रहा है कि महिलाओं पे, जैसे आपने बताया
1: हाँ
0: कि
1: जी मैम,
0: महिलाओं को आमतौर पे पैरों में दर्द या कमर में
2: कमर
0: दर्द
2: में दर्द है।
0: और सर दर्द भी बहुत बार हो जाता है, और तो ये कुछ मेन समस्याएं उनकी होती हैं, या फिर उनको थकान, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसके लिए वो क्या क्या टेस्ट करवाएं? सबसे पहले महिलाओं की बात
1: बिल्कुल
0: कर
1: मैम,
0: रहे हैं।
1: मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं एक बार एक गर्ल्स कॉलेज में चले गया था,
0: जी
1: तो वहाँ पे हमने 800-900 लड़कियों के HIV टेस्ट किए। मुश्किल से 10-12 ही ऐसी लड़कियाँ थी जो अबव 11 थी,
0: हाँ जी ये तो फैक्ट है।
1: नहीं तो तकरीबन बिलो 9 9 ग्राम्स।
0: जी
1: तो जिसका HIV कम होगा, चाहे मेल है फीमेल है, तो उसको थकान रहना स्टार्ट हो जाएगा, अनएनर्जेटिक फील करेगा, सांस चढ़ जाएंगे, जल्दी थक जाएगा, और किसी किसी को तो हल्का फीवर भी होना स्टार्ट हो जाता
0: जी
1: है।
0: हाँ, और चेहरा निस्तेज।
1: हाँ जी हाँ जी, निस्तेज हो जाएगा,
0: जी
1: उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मूड भी स्विंग करेगा,
0: हाँ
1: उसमें भी चिड़चिड़ा रहना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये
0: जी
1: सारे तो फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ये सारी की सारी है, क्योंकि वो अपने खान पान पर ध्यान दे नहीं पाती। कई मामलों में उसको अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है या उसने अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया है, तो उसकी वजह से वो कहता है अपने खान पान पे ध्यान ना देने की वजह से HIV उसका डाउन चला गया, हीमोग्लोबिन। जब उसको हीमोग्लोबिन डाउन चला गया तो उसको थकान रहना स्टार्ट हो गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन सारी महिलाओं को या जिन पुरुषों को लगता है कि थकान सी महसूस हो रही है, एनर्जेटिक फील करता है, तो क्या करेंगे, कंप्लीट हीमोग्राम करा लेंगे।
0: जी
1: उसमें क्या था, सारा है, हीमोग्लोबिन हमारा कितना है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति कितनी है, प्लेटलेट काउंट वगैरह, MCH, MCV, MCHC, वो सारा की सारा उसमें आ जाता है। तो उसमें ये पता चल जाता है अगर अनिमिक भी है तो किस टाइप का अनिमिया है, आयरन डेफिशिएंसी अनिमिया है, फॉलिक एसिड एसिड डेफिशिएंसी अनिमिया है,
0: कंप्लीट हीमोग्राम।
1: कंप्लीट हीमोग्राम। अगर कोई कंप्लीट हीमोग्राम ना भी कराना चाहे तो हीमोग्लोबिन करा सकता है,
0: जी
1: उसको कराना चाहिए।
0: जी
1: और जो रूटीन में तो अब क्या है, ये ट्रेंड ही चल गया है एक तो, कि हम सारे की सारे लोग इतने अवेयर होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि एजुकेशन की वजह से तकरीबन 20 से लेकर 30 तक तो वो सारे की सारे अपना हेल्थ बॉडी चेकअप ही करा रहे हैं,
0: जी अवेयरनेस तो ठीक है डॉक्टर
1: अवेयरनेस।
0: साहब,
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: तो आपने ठीक कहा कि हम अवेयर हो रहे हैं, परंतु हमें ये जानकारी नहीं होती। जैसे हम करवा लिया हमने जाके,
1: हाँ जी
0: फिर वो जो टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर बहुत सारी महिलाओं को या पुरुषों को, जो उनको पता ही नहीं है कि हम इसको कैसे रीड कैसे करें और ये
2: उसका
0: हमारी रिपोर्ट,
2: विश्लेषण किस तरह से
0: हाँ
2: करना है।
0: हमारी रिपोर्ट हमें क्या इंडिकेट कर रही है, कहाँ हमें डिफिशियंसी है, तो उसके लिए तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या सेल्फ मेडिकेशन तो सही नहीं है?
1: नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, लेकिन क्या था, इसके लिए भी उनके जो भी ब्लड की रिपोर्ट्स होंगी उसके आगे रेफरेंस रेंजेस लिखी होती हैं,
0: जी।
1: और ये उस अपना जो भी लैब्स हैं, कंसर्न लैब हैं, वो बता देता है। आजकल तो ऐसा सॉफ्टवेयर आया है कि जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी ना, जो एबनॉर्मल रिपोर्ट्स होंगी ना, तो वो
0: बोल्ड,
1: हाईलाइट्स हो जाएंगी,
0: हाँ
1: वो बोल्ड
0: हाईलाइट
1: हो
0: होती है,
1: जाएंगी,
0: हाँ
1: तो उससे उसका पता चल जाएगा। नहीं तो आप जब भी कोई भी किसी लैब वाले के पास जाएगा टेस्ट कराने के लिए, तो उससे अपना पूरा की पूरा उसका विश्लेषण उससे जानना चाहिए।
0: जी।
1: उससे फिर क्या होगा, अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है, अगर कहीं पे एबनॉर्मल है और किसी डॉक्टर की सलाह की ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो अपने डॉक्टर को उसको दिखा सकता है।
0: जी
1: इससे आपका टाइम बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, शरीर पे होने वाली हानि बच जाएगी, अगर हम टाइमली अवेयर रहेंगे तो।
0: जी हाँ, तो इसके लिए भी ये वाली अवेयरनेस भी जरूरी है
1: जी मैम,
0: कि जो उसको हाईलाइटेड है वो आपको ध्यान में
1: ध्यान
0: रखें,
1: में रखना
0: ये रिपोर्ट के अंदर इस तरह से उसको रीड करना है, फिर आप उसके बाद जाके डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से सलाह लें कि
1: सलाह।
0: डॉक्टर साहब ये

0: रिपोर्ट है और मुझे ये समस्याएं हैं, तो बजाय कि पहले डॉक्टर के पास जाने के बाद, मतलब अपना टाइम बचाने के लिए आप पहले से कुछ करवा लें, और अगर कोई स्पेसिफिक कोई जांच है जो डॉक्टर सजेस्ट करें तो वो बाद में करवाने पड़ेंगे।
1: जी मैम, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टोमेटिक के हिसाब से, फिर सिम्टोमेटिक के हिसाब से जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं ना वही कराने
0: जी,
1: चाहिए।
0: जी आपका मतलब सिम्टोमेटिक का मतलब है जैसे मान लो कोई आदमी असामान्य रूप से कमजोर होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, तो
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: सिम्टम हो गया,
1: जी मैम,
0: या वो बहुत मोटापा उसका
1: तो
0: बहुत बढ़ गया
1: वो
0: है
1: सिम्टोमेटिक।
0: तो वो सिम्टम हो
1: हाँ
0: गया।
1: जी, हाँ जी मैम,
0: हाँ जी,
1: हाँ जी मैम,
0: तो वो तो सिम्टोमेटिक हो गया।
1: बिल्कुल।
0: और असिम्टोमेटिक?
1: एसिम्टोमेटिक में तो क्या होगा, कई बार हमें पता ही नहीं चलता।
0: जी
1: अब पता ना चलने का होता है कि हमें ये ही नहीं पता चल रहा है कि अभी हम यूं देख रहे हैं कि कोई नहीं, मैं काम की वजह से थक गया हूँगा, काम की वजह से थक गई होंगी,
0: हाँ जी
1: वो इसको सिम्टम्स नहीं मानते मैम, वो सोच रहे कि काम के प्रेशर की वजह से होगा, लेकिन ये कि सिम्टम्स है,
0: हाँ,
1: वो एक
0: वो
1: सिम्टम्स है,
0: कोई ना कोई बीमारी
1: सिम्टम्स
0: हमें हो
1: वो
0: रही है।
1: सिम्टम्स है एक, चाहे
0: हाँ
1: वो स्ट्रेस की वजह से है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से है,
0: जी
1: और या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये एसिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स होते भी हम एसिम्प्टोमेटिक मान लेते हैं इसको,
0: जी
1: तो इसलिए हमें पहले इसकी जांच करा लेनी चाहिए।
0: और ये महिलाओं और पुरुषों पे दोनों पे बराबर लागू होती है ये बात?
1: नहीं, महिलाओं पे ज़्यादा है,
0: महिला
1: महिलाओं पे इसलिए ज़्यादा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष के मुकाबले ज़्यादा होती है।
0: जी
1: अगर कोई हाउस वाइफ है तो घर में ही उसको इतने सारे काम हो जाते हैं, इन-लॉज के, बच्चों के, पति के,
0: हाँ
1: खुद
0: जी,
1: के,
0: कि वो अपना
1: तो
0: ध्यान नहीं
1: वो
0: रख
1: ध्यान नहीं
0: पाती
1: दे पाती,
0: हैं।
1: वो दूसरों का ध्यान रखने के चक्कर में अपने खान पान का ध्यान नहीं रख सकती
0: जी,
1: है,
0: और पौष्टिकता
1: और
0: जो वो औरों
1: पौष्टिक
0: को देती हैं
1: नहीं,
0: वो खुद के लिए तो बचता ही नहीं कुछ
1: बचता ही नहीं
0: थाली में
1: है।
0: फिर।
1: देखो, खाने का मन भी अच्छे से तब मन करेगा जब उसके पास टाइम होगा, वो टाइम उसने अपने वाला भी दूसरे को दे दिया है,
0: हाँ जी
1: फैमिली को दे दिया है, तो वो तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए उस टाइम पे खाना खाती है सिर्फ,
0: हाँ जी, ठीक
1: बिल्कुल।
0: कह रहे हो।
1: और
0: लेकिन अगर हम बात करें, आपने खान पान की बात की, खान पान में अगर कोई कमी है या फिर शारीरिक कोई दिक्कत आ रही है तो सिम्टम हमें नज़र आएंगे और टेस्ट करवाने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इससे इतर अगर हम बात करें, अगर महिला का खान पान भी ठीक है, आराम भी सही समय पर वो कर रही हैं, उसके बावजूद कोई ऐसी बीमारी महिलाओं के शरीर से संबंधित जो जाने अनजाने लग जाती है, तो उसके पीछे एक अन्य कारण कहीं ना कहीं सुनने में आया है, उसको आप स्पष्ट कीजिएगा, कि अवसाद या किसी भी तरह के तनाव से अगर महिला जूझ रही है तो भी कई शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं। इससे आप कितना सहमत हैं?
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने,
0: जी
1: क्योंकि देखो फीमेल जो है ना, भगवान ने कुदरती तौर पर इसको इतना सेंसिटिव बनाया है,
0: जी
1: अगर उसको हल्का सा स्ट्रेस हो जाए, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई बड़ा सा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस का मतलब है उसको अपने काम का स्ट्रेस, ड्यूटी टाइम पे जाने का स्ट्रेस, उसको ये चिंता होगी मेरे को बच्चों को ट्यूशन लेके आना है, छोड़ के आना है,
0: छोड़ के
1: बच्चा
0: आना
1: कैसे
0: है।
1: स्कूल जाएगा, अगर टाइम, अगर उसने ट्यूशन लेके गया पता नहीं खाना खाया है नहीं खाया है, वो ये वाला भी स्ट्रेस ले जाती है, इस स्ट्रेस की वजह से उसको बहुत सारे हार्मोनल अपना डिस्टरबेंस होना है। फीमेल का शरीर ऐसा बनाया है भगवान ने कुदरती तौर पे, अगर उसका एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है ना, तो उस हार्मोन की वजह से कोरिलेटेड हार्मोन है ना, बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब होने
0: डिस्टर्ब
1: स्टार्ट हो जाते हैं,
0: जी
1: और उसको सिम्टम्स नहीं आते उस हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से, उसको धीरे धीरे जो हमारी ओवरीज होती हैं महिलाओं की, उसमें सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं, वो प्राइमरी
0: हाँ, आजकल
1: स्टेज में,
0: महिलाओं में सिस्ट की बहुत
1: तो
0: समस्या जो हो
1: उसको
0: रही है।
1: प्राइमरी स्टेज में पता ही नहीं चलेगा,
0: जी
1: उसको पता तब चलेगा जब वो सिम्टोमेटिक हो जाएगी, वो
0: जी
1: हुआ
0: जी
1: कैसे, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से, जैसे ही हार्मोनल डिस्टरबेंस होगा फीमेल्स का, उसको पीरियड्स में डिस्टरबेंस हो जाएगा, सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ही
0: जी
1: सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगी, अननेचुरल ब्लीडिंग होना बाद में
0: जी
1: सिम्टोमेटिक,
0: और इवन
1: लेकिन
0: गैस की
1: गैस की
0: समस्या।
1: समस्या आ
0: हाँ
1: जाएगी,
0: जी
1: हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा,
0: जी
1: HB डाउन चला जाएगा, तो ये कई सारी बीमारियां उसको हो
0: जी
1: जाती
0: हाँ,
1: हैं, जो
0: और
1: कि वो
0: पूरी
1: ध्यान,
0: बॉडी में दर्द
1: दर्द
0: होना,
1: पेन रहना
0: यहाँ से
1: स्टार्ट,
0: पेन स्टार्ट कर, कुछ महीना
1: हाँ,
0: कहती है यहाँ से स्टार्ट हो रहा, पूरे शरीर
1: चिड़चिड़ापन,
0: में जा रहा है,
1: चिड़चिड़ापन रहना,
0: चिड़चिड़ापन
1: कई सारी चीज़ें स्टार्ट हो
0: जी,
1: जाएंगी,
0: फेस पे आईज के नीचे
1: हाँ
0: स्वेलिंग, फेस पे
1: हाँ
0: स्वेलिंग, तो कितनी सारी समस्याएं जिनसे महिलाएं जूझती हैं।
1: जी मैम,
0: और इसी तरह से पुरुष भी, आजकल पुरुषों में जैसे शुगर की समस्या बहुत ज़्यादा
1: शुगर की
0: है, हाँ जी,
1: समस्या है,
0: डायबिटिक
1: ओबेसिटी,
0: हो रहे हैं,
1: मोटापा
0: ओबेसिटी
1: है,
0: है,
1: हाँ जी,
0: तो वो उनके अपने कारण हैं,
1: उनके अपने
0: तो
1: कारण
0: पुरुषों को भी कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए?
1: मैम, रूटीन में तो जो below 40 हैं उनको सारा हेल्थ चेकअप कराना चाहिए,
0: जी,
1: क्योंकि आजकल पता ही नहीं चलता, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लेट सिम्टम्स आना स्टार्ट होता है,
0: जी
1: इनके कराने का फ़ायदा यही है कि जैसे हम अपना हेल्थ चेकअप करा लेते हैं तो हमें पहले हमें पता चल जाता है हमें क्या दिक्कत क्या है, अगर हम मोस्टली तो हम क्या करते हैं सभी लोग, हम तब जाते हैं डॉक्टर के पास टेस्ट कराने जब हमारे में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते
2: जी
1: हैं।
2: हाँ।
1: तो उससे फिर बाद में दिक्कत, क्योर करने में दिक्कत, पैसा कंज्यूम ज़्यादा, डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, शरीर का नुकसान, कई सारी चीज़ें। अब जैसे पुरुष हैं अबव 40 हैं, उनमें यूरिन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाएगी। तो कई सारे पुरुष कहेंगे कि भी मेरी दिनचर्या ऐसी है कि मैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि मैं यूरिन अच्छे से पास नहीं कर रहा हूँ या यूरिन का फ्लो कम है, तो उनको अपना फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का भी फर्क पड़ता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पुरुषों को तो क्या है, जिसको लगता है कि मैं यूरिन अच्छे से पास नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका फ्लो ठीक नहीं है, तो उसको एक PSA का टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि अबव 40 अबव 50 के करीब जो लोग चले जाते हैं तो उनको प्रोस्टेट का कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है।
2: जी, जी।
1: तो उनके लिए PSA एक होता है प्रोस्टेट का कैंसर देखने के लिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कि यूरिन का टेस्ट भी कराना चाहिए।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्यों होता है कि जैसे कोई टेस्ट करवाया, कोई भी आपने खुद करवाया, डॉक्टर ने बताया, तो वो जो हमारी रीडिंग आती है, वो अगर हमने वही टेस्ट किसी और दूसरी लैब से भी करवाया तो उसके अंदर कई बार आमतौर पर जैसे मिल रहा है आजकल, उसमें रीडिंग में फर्क आता है?
1: जी मैम, आएगा मैम, क्योंकि मशीन टू मशीन वेरी करता है और टेक्नीशियन ने जिसने किया उसमें भी फर्क आता है। दूसरा कहता है, आप सपोज करो मैंने टेस्ट किया, आपने भी टेस्ट किया, आपने कंट्रोल लगाई या नहीं लगाई, मैंने पुराने वाले कंट्रोल पे किए नहीं किए, उससे डिफरेंस आ जाता है।
2: तो रिलाय कैलिब्रेशन किस पे?
1: ये जस्ट एक स्क्रीनिंग होता है, कन्फर्मेटरी नहीं होता।
2: अच्छा,
1: हाँ जी, तो इसको इतना बड़ा इशू नहीं मानते। इशू तब मानते हैं, सपोज करो आपकी HV की वैल्यू, मैंने टेस्ट किया, मैंने 5 दे दी, तो उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने दे दी 8-10।
2: HV की वैल्यू का तो ठीक है,
1: नहीं नहीं मैं कोई भी वैल्यू है, तो उस पे तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। अगर 0.5 ये 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे होता तो इतना बड़ा एरर नहीं होता वो।
2: पर डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो कोई डायबिटिक नहीं है, वैसे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए करवाया, तो अगर वो प्री डायबिटिक आ गया,
1: हाँ जी,
2: एक जगह प्री डायबिटिक, तो उसके दिमाग में तो आ जाएगा,
1: हाँ,
2: ना कि मैं तो प्री डायबिटिक हो गया,
1: हाँ,
2: और दोबारा टेस्ट करवाया किसी और से, दो प्री डायबिटिक आ नहीं रहा है,
1: वही मैं बता रहा हूँ।
2: उसके लिए क्या किया जाए?
1: उसके में क्या होता है कि आजकल देखो दो तरीके के टेस्ट करते हैं लैब्स में, एक तो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर होता है जो मैनुअली होता है, आप करते हो उसमें दिखता है आपको।
2: अच्छा।
1: एक फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर होता है, उसमें आपका ब्लड सैंपल रख देंगे, वो क्या अंदर हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा।
2: हाँ, हाँ, वही होता
1: तो
2: है,
1: उसमें क्या था, जो भी वैल्यू आती है वो उठा के दे देते हैं। अब वर्कलोड के हिसाब से तकरीबन लोग फुल्ली एनालाइजर पे काम कर रहे हैं। अब उसमें क्या था, ट्यूब्स वगैरह गंदी हों, अंदर कैसी रिएक्शन हुई है उसमें गड़बड़ आ जाएगा, कंट्रोल प्रॉपर चला है या नहीं चला है, कंट्रोल ही फेल हो उससे पड़ता है।
2: तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किससे करवाना चाहिए, फुल्ली
1: देखो लोड के ऊपर है, हम नहीं, क्या था, आपने एक रिलायबल लैब जो कि हरियाणा गवर्नमेंट चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का है, वो रिकॉग्नाइज्ड लैब है, उससे कराना चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन से कराना चाहिए, प्रॉपरली जो कंट्रोल टाइम पे लगाता हो उससे कराना चाहिए। कंट्रोल का बहुत बड़ा इशू है इसमें, अगर आपका कंट्रोल ठीक नहीं आ रहा है तो आपकी पेशेंट की वैल्यू जो है वो भी डिफर करेंगे।
2: पर डॉक्टर साहब, वो तो हम तो सैंपल देके आ जाते हैं, अब पता नहीं चला उसने लगाया नहीं लगाया, हमारे सामने तो टेस्ट होता नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक गंभीर विषय है।
1: नहीं,
2: तो
1: गंभीर विषय ऐसा भी है, अभी बहुत सारा ट्रेंड ये भी चला है कि ऑनलाइन जो बुकिंग है वो लोग करा लेते हैं,
2: हाँ
1: वो
2: घर हाँ।
1: से सैंपल लेके
2: घर से सैंपल लेके
1: चले,
2: तो वो देना चाहिए कि नहीं?
1: नहीं, वो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए।
2: अच्छा,
1: क्यों नहीं देना चाहिए, उसका एक कारण है। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे है 99 का है, वॉल बॉडी चेकअप है, 1500 का है, 1800 का है, वो ये है, तो हम सोचते हैं कि ये 1500 का है, ये 2500 का हो रहा है, ये 999 वाला है, तो हम ये क्यों ना कराएं। वो क्या करते हैं फिर, वो पूरे के पूरे टेस्ट रन नहीं करते।
2: अच्छा, हाँ, उसमें कुछ टेस्ट रह जाते हैं,
1: रह नहीं जाते, वो करेगा
2: नहीं, कर
1: क्योंकि जब उसकी कॉस्ट ही नहीं आएगी,
2: करते ही नहीं है वो। हाँ, ये तो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है,
1: करते ही नहीं है। जैसे KFT है, KFT में 10 टेस्ट होते हैं,
2: नहीं T3 T4 करो, TSH नहीं करेंगे,
1: TSH नहीं करते, TSH है में।
2: अच्छा, TSH करते हैं, T3 T4 नहीं करते,
1: T3 T4 TSH TSH अगर इस अब तीनों को लगाएंगे तो उसका कॉस्ट ही 200 से ज्यादा आ जाएगा।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: और बाजार में वो कह देंगे जी मैंने कहा वो 250 रुपये में कर रहा है, वो कहता है मैं तो 100 रुपये में कर दूंगा,
2: जी, जी।
1: वो TSH लगाएगा, उनको ये पता है, उन्होंने साइंस पढ़ रखी है कि अगर TSH रेज्ड होगा, T3 T4 ये रिड्यूस हो जाएगा,
2: जी।
1: अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है, लेकिन 100-200 में से एक लोग ऐसा भी होगा जिसका अगर ये नॉर्मल होगा तो ये रिड्यूस हो सकते हैं।
2: जी, चलिए डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है जो आप हमें दे रहे हैं।
0: इस सब जानकारी के लिए विजय सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं घर आंगन परिवार की ओर से, और इसी के साथ आज का घर आंगन कार्यक्रम यहीं समेटते हैं। बहनें सुन रही थी कार्यक्रम घर आंगन, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
4: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
3: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma.
1: सीबीआई ने आज हरियाणा सरकार के बैंक और एयू फाइनेंस बैंक में रखी 661 करोड़ रुपए की सरकारी निधियों के दुरुपयोग एवं हेराफेरी मामले की चल रही जांच के संबंध में चंडीगढ़, पंचकुला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। सीबीआई ने तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री जब्त की। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में 6 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ लोक सेवकों और मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक के आवासीय परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि खाते खोलने, धन के हस्तांतरण और निधि की हेराफेरी में सरकारी अधिकारियों की बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत थी और आरोप है कि सरकारी अधिकारियों को इसके लिए अनुचित लाभ मिले हैं। नोएडा स्थित एक कंपनी मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के खाते में हेराफेरी की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई द्वारा हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से एक मामला हाथ में लेने और मूल रूप से आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में दर्ज किए 2 मामलों के बाद जाँच की जा रही है। प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद सीबीआई पहले ही पंचकुला की सीबीआई अदालत के समक्ष 2 विभागों, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों की मामले में भूमिका का विवरण देते हुए प्रथम आरोप पत्र दायर कर चुकी है। आरोप पत्र में IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक के साथ जमा किए गए सरकारी धन की धोखाधड़ी के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि तीनों मामलों की जांच सक्रिय रूप से जारी है और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 मार्च को आयोजित बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अंबाला के जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि परिणामों में जिला अंबाला ने पूरे हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
2: 11,056 लोगों ने परीक्षा दी थी 15 मार्च के दिन और उनका अभी परिणाम आया है और 10,991 परीक्षार्थी सफल रहे हैं, यानी हमारा जो परीक्षा परिणाम है 99.41% रहा है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ इस बार उल्लास लर्नर्स का, वो भी सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए जो लोग परीक्षा के अंदर बैठे वो भी हमारे सबसे ज्यादा रहे और परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोग भी जो है वो अंबाला में सर्वाधिक रहे।
1: उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया,
2: जो लोग कभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय नहीं जा पाए, 15 साल से ऊपर की उम्र के वो लोग, 80 साल के भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों का पहले हम सर्वे करते हैं, उसके बाद उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, उसके बाद उनकी परीक्षा ली जाती है भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, परीक्षा परिणाम आता है, उसके बाद तीसरी कक्षा तक की शिक्षा का उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है।
1: पलवल में फिट इंडिया एवं फिट हरियाणा अभियान को लेकर आज साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साइकिल रैली हुड्डा सेक्टर 2 पलवल से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में सम्पन्न हुई। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, खेल विभाग पलवल के उप निदेशक राम मेहर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। हरियाणा के आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज हिसार स्थित टाउन पार्क में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

0: हमारे सभी सुनने वालों को अर्चना मिश्र का नमस्कार। आज महीने का पहला रविवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं फोन इन आधारित आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। हमारे सभी सुनने वालों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत हम करते हैं और बता देते हैं अपने टेलीफोन नंबर 01262-255-446-255-447 और 255-448। आप हमें इन टेलीफोन नंबरों पर फ़ोन करें और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचे। पहली कॉल देखते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश, आपका स्वागत है शिमला से। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: जी तो मुझे गाना सुनना है देखा कसूर, और गाने के बोले मिलने की कोशिश करना और वादा कभी न करना, और आपको पूरी आकाशवाणी टीम को कल जो है 8 जून को आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्थापना भी हो रही है, तो उसकी भी बहुत आपको शुभकामनाएं।
0: जी जी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने जो भी शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। अपनी पसंद का गीत सुनिए।

0: हेलो,
1: तितलियां फूलों पे मंडराती होंगी, भंवरों को लुभाती होंगी, याद तो हम आप लोगों को करते हैं, हिचकियां भी आप ही को आती होंगी।
0: हाँ बराबर आती है, बराबर आती है। नाम बताइए अपना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदाना का इंदौर से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है हसीना भी मंसूरी, बताइए आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है खुदा गवाह और गाने के बोल हैं, रब को याद करूं एक बार याद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, ये सुना दीजिए।
0: चलिए आपकी पसंद पूरी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मैडम ये रात में आता नहीं क्या फोन इन कार्यक्रम?
0: आता है लेकिन कभी कभी तो कोई रिले आ जाता है तो उसकी वजह से। हाँ हाँ ये बराबर आता है, अभी हटाया नहीं है ये। और रेडियो से कोई कार्यक्रम जो होता है ना सदा के लिए हटता नहीं है यह, है ना? तो कभी कोई कार्यक्रम आ गया, कभी कुछ आ गया, तो इस वजह से कुछ उसमें हो जाता है। आप बराबर सुनती रहिए, आज तो सांग का दिन है तो आप सांग सुनेंगी, है ना? तो बाकी जो इसके निर्धारित दिन है वो दिन रहते हैं। अगर कोई रिले दिल्ली से आता है तो बात अलग है। ठीक है हसीना, आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जिला उज्जैन से इतनी दूर से आप हमसे बात कर रहे हैं, ऐप पे सुनते हैं हमें?
1: हाँ जी, मोबाइल ऐप पे सुनता हूँ।
0: ऐप बराबर चलती है?
1: आता है ना सुबह 9 बजे, वो कार्यक्रम भी सुनता हूँ, वो पार्टिसिपेट भी करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। क्या साफ सुनाई देता है ऐप पर?
1: हाँ, मोबाइल ऐप से तो एकदम स्पष्ट प्रसारण मिलता है।
0: हाँ, चलिए बहुत अच्छा है। ऐप ने हमारा जो श्रोता परिवार है बहुत बड़ा कर दिया है, बहुत जगह तक हमारी पहुंच हो गई और बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं इस ऐप के
1: हाँ,
0: माध्यम
1: जैसे
0: से।
1: मोबाइल ऐप पे आते हैं ना कार्यक्रम, तो मतलब हर राज्य के श्रोताओं को हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं।
0: हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है, तकनीक का ये कितना बड़ा फायदा है। अच्छा बताइए, कौन सी फिल्म का गीत
1: और एक
0: सुनवाएं?
1: बात ये भी, जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं ना दीदी, तो फिर भी मोबाइल पे कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं। पहले क्या होता था, रेडियो पर आता था ना प्रसारण, तो जब घर पे रहते थे या फिर कहीं खेत पे जाते थे तभी सुन पाते थे, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि हर मोबाइल में कार्यक्रम सुनने को मिल जाता है, मतलब हर पॉकेट में रेडियो पहुंच चुका है।
0: हाँ बिल्कुल, प्रसारण परिधि का पहले इशू रहता था, लेकिन जब से हम ऐप पे हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, तो असीमित हो गया है हमारा प्रसारण का दायरा, है ना,
1: बिल्कुल, जैसे अभी
0: दूर
1: हमारे
0: तक
1: यहाँ
0: है।
1: पे आकाशवाणी उज्जैन में भी केंद्र बना हुआ है अभी, तो अगर आप रोहतक में हो तो हमारा आकाशवाणी केंद्र उज्जैन से भी सुन सकते हो।
0: हाँ बराबर सुन सकते हैं, इसकी जानकारी
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए श्रोता भाई, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: गंगा यमुना सरस्वती का फिल्म का है, गंगा साजन मेरा उस पार है
0: बिल्कुल, साजन मेरा उस पार है, आपको जरूर सुनवा देंगे।
1: जी।
0: हाँ जी, तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जय माता जी।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंतमल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी जी, आपकी आवाज़ से आपके गांव के नाम से हम परिचित हैं, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज जी?
1: जी मैडम, मैं हूँ सुमन कल्याणपुर जी की आदमी, उनकी आवाज़ में कोई गाना आपके पास है तो मैं वो सुनना चाहूँगा मैडम।
0: हाँ बिल्कुल, बनता भी है। देखिए अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है और बिल्कुल 89 वर्ष की उम्र में ये गई हैं।
1: जी, क्योंकि हमारे भी ऐसे कलाकार, क्योंकि वो यादें छोड़ रहे थे, वो उनके आवाज़ से हम गाने के माध्यम से हम पहचानते
0: हैं, उनको याद कर लेते हैं। लता जी गईं, फिर आशा ताई गईं और उसके बाद सुमन कल्याणपुर जी का जाना हुआ। दुखद है, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सुमन कल्याणपुर जी का गाया ये गीत आपको सुनवाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम रोहित बोल रहा हूँ, भिवानी से। हाँ
0: रोहित जी, अभी तक तो आप चंडीगढ़ से हमसे बात करते थे, आज भिवानी में आए हैं आप।
1: जी, मेरी माँ गुजर गई। माँ
0: अरे, ये बहुत दुखद है, आपकी माता जी का निधन हो गया।
1: रिटायर्ड प्रिंसिपल थे मेरी माँ।
0: अच्छा।
1: हाँ जी,
0: माँ जैसे तो कोई नहीं होता।
1: कोई नहीं होता मैडम।
0: ये बहुत दुख की बात है और हमारी ओर से हार्दिक संवेदनाएं आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं।
1: जी
0: बताइए
1: धन्यवाद मैडम आपका।
0: बताइए, कौन सी फिल्म का गीत आपको सुनवाएं?
1: एक पुराना गीत है मैडम, फिल्म का नाम तो नहीं पता लेकिन गीत है, माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।
0: उसको तो नहीं देखा। बिल्कुल, माएँ हर घर में हैं और हर घर में खुदा बसता है माओं की शक्ल में। तो आपकी माता जी के प्रति हम श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं और आपको ये गीत सुनवाते हैं। रोहित जी, ईश्वर आपको शांति दें, शक्ति दें।
1: ओम शांति।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: और फिर रामदेव बोलना जी, ठीक हो जी?
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक है रामदिया जी, आप बताइए आप ठीक हैं?
1: ठीक है जी अर्चना जी।
0: जी बताइए कौन सी फिल्म का गीत आज आप सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है वक्त हमारा है।
0: अच्छा,
1: गाना है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गाने के बोल है तुमको देखा हो गया दुनिया से बेगाना में।
0: अच्छा, तो ये गीत आपको सुनवा देते हैं रामदिया जी, सुनिए।
1: ठीक है जी अर्चना जी, धन्यवाद जी,
0: आपका भी शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार जी। अर्चना जी
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, मैं रमेश चहल बोल रहा हूँ जी।
0: रमेश कुमार चहल हमारे काफी पुराने श्रोता हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी
1: और ठीक ठाक जी, आकाशवाणी परिवार
0: जी,
1: जी।
0: सारा आकाशवाणी परिवार ठीक है, आपकी दुआओं के साए में है, लेकिन
1: हाँ
0: आपके
1: जी,
0: पत्र कम आते हैं, ये शिकायत है हमें आपसे।
1: थोड़ा कम सुनने को कम कर रहे हैं जी, प्रोग्राम सुनने कम टाइम लगता है जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी, हाँ जी, कभी
0: जी,
1: कभार कर लेता हूँ जी, सुन भी
0: चलिए
1: लेता हूँ कभी कभार। हाँ
0: चलिए,
1: जी,
0: आपकी सुविधा का है वो तो मामला।
1: हाँ जी
0: बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: जी, हस्ती फिल्म है जी,
0: हस्ती फिल्म है।
1: मत पूछ मेरे महबूब।
0: इस
1: हाँ जी,
0: फिल्म का
1: ये
0: ये
1: गीत
0: गीत
1: सुना जी।
0: अच्छा फेमस हुआ था। हाँ जी, आपकी पसंद पूरी करते हैं, शुक्रिया आपका।

0: हेलो
1: गुड आफ्टरनून दीदी
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सुंदरपाल कोसी गांव केलंगा से दीदी।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है सुंदरपाल जी, बताइए कैसे हैं और कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: दीदी 80 के दशक में एक फिल्म देखी थी मैंने, कच्चे धागे।
0: अच्छा,
1: और मैं एक मेरे रजिस्टर है उसमें एक लेटर मिला मैंने।
0: अच्छा
1: हाँ, खत मिला तो एक खत गाना सुना दो। हाय हाय, एक लड़का मुझको खत लिखता है।
0: पर आप तो लड़के थे। चलिए जी, आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं कौशिक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कार्यक्रम में फोन किया।
1: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। अर्चना जी नमस्कार, मेघराज शर्मा भाणाबराम नाम से जी।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं?
1: नसीब फिल्म का जी, जिंदगी इम्तिहान लेती है, सुमन कल्याणपुर और साथी और मैं जी।
0: हाँ जी, इनके साथ
1: हाँ जी
0: कमलेश अवस्थी और अनवर जी
1: हाँ
0: ने
1: जी।
0: इस गीत
1: अर्चना
0: को गाया था। सुमन
1: जी
0: जी,
1: काफी दिन हो गए, अभी पता लगा कि जी इतनी बड़ी आवाज होते हुए जी, हमें तो लता मंगेशकर की आवाज समझते थे काफी दिनों से ही।
0: जी जी बिल्कुल, उनसे उनके
1: हाँ
0: बराबर गाती
1: जी
0: थी। और
1: जी
0: जी
1: आज
0: जी
1: सुबह का प्रोग्राम था जो 9 से 10 का जी, उसमें पता लगा कि बहुत गीत हम तो जी बहुत मिस करते थे कि वो लता जी की आवाज है जी,
0: बहुत
1: आज पता लग
0: सुंदर,
1: गया
0: बहुत
1: जी।
0: बेहतर गीत इन्होंने गाए
1: हाँ
0: हैं। और
1: जी
0: अब हमारे बीच में नहीं हैं चल
1: जी
0: बसी।
1: जी
0: और जो
1: जी
0: आपने गायक कमलेश अवस्थी जी हैं, वो भी अब हमारे बीच में नहीं है।
1: हाँ जी
0: 2024
1: हाँ
0: में
1: जी
0: वो
1: हाँ
0: भी
1: जी
0: हमारे बीच से चले गए। और ये तीन आवाज़ें आप सुनेंगे, अनवर, कमलेश अवस्थी और सुमन
1: हाँ
0: कल्याणपुर
1: जी
0: जी
1: हाँ जी
0: की, आपके साथ हम भी सुनते हैं। बहुत बहुत
1: जी जी
0: शुक्रिया आपने
1: धन्यवाद
0: कार्यक्रम
1: जी,
0: में फ़ोन।

0: हेलो
1: अर्चना बेन
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो शायद कॉल ड्रॉप हो गई। फिलहाल हमारा श्रोता भाई से संपर्क कट गया है, लेकिन एक गीत कच्चा चोर फिल्म से, गरीबों से प्यार कर ले, ये सुनवाने की एक फरमाइश थी हमारे इन श्रोता भाई की, तो पूरी कर देते हैं। कॉल ड्रॉप होने के लिए हम खेद प्रकट करते हैं, तकनीक के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं।

0: इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया।

0: वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6ठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। किसान भाइयों, मौसम का जिक्र, दो दिन पहले कुछ मौसम बदलाव में आया था, लेकिन ईबे हल्के जिक्र करा तो तेज धूप पड़ने लग रही है, और तेज धूप का देखो जिस के थोड़ी सी परेशानी हुआ है, वो कुछ फायदा तो जरूर हुआ है। इतना है कि जो आग आने वाली जो हमारी फसल है, उनकी रूपरेखा जो हमने तैयार कर रखी है, उनकी कितने प्योद बनानी है, कितने कोई और काम करना है, कितने कोई बुआई का काम है, उसमें थोड़ी सी देखो गर्मी के टाइम पर दिक्कत तो हमने आवे है काम कर दिया ने, लेकिन जो जमीन का हिसाब है वो ठीक हो गया है। तेज धूप जब लग गया है तो एक तरह जमीन का उपचार हो गया है। और मौसम तो देखो हर साल ईसा आवे है, हम पिछले साल वाले शायद भूल जा हाँ। आई बात जी न्यूकन लगा इनको तो भाई घनी सर्दी पड़ी, घना ज्यादा पड़े है भाई, आवे तो हर बार है, लेकिन बने के है कि पिछली बार वाला मेरा ध्यान को रहा, उसने हमने सोचा हाँ कि भाई जो पिछली बार आया था वो कम था, इनको तेज गर्मी पड़ने लग रही है या तेज बरसात आ रही है, तेज आंधी आएगी, ये प्रकृति का अपना एक हिसाब है, वो उसके हिसाब से अपना चल रहा है और वही ठीक है हमारे लिए। हम तो न्यू मानना है कि भाई प्रकृति ने सबका ध्यान है। बाकी फसलों की जो बात है उसमें तो जिन भाइयों ने धान लगाने हैं वो प्योद बोन लाग रहे हैं, बो भी रखे कुछ भाइयों ने, कुछ हाँ की बातचीत ये भी आया है कि भाई गर्मी पड़े है, कुछ पीलापन हो गया, कमज़ोर सी रहेगी प्योद, ठीक डालते निकल नहीं रही, ये दिक्कत तो गर्मी के टाइम पर आ करें, लेकिन जैसे ही शाम के टाइम में हमने नहीं लग गया है कि थोड़ी सी ठंड सी शाम के टाइम की बने, उस टाइम पर देखा तो नहीं लग गया है कि पौधे ठीक ठाक दिखें भी है, और प्योद में तो पानी भी शाम का टाइम देना पड़ा करा है, हम शाम को ही पानी दे हैं, इस चीज़ का ज्ञान हमने भी है। लेकिन इसके साथ साथ बात क्या है कि जो दूसरे हमारे काम है, जो कर ईंख का काम है, ईंख में इस टाइम पर नोड़ा पता का जो भी काम है वो भी हमने संभालना है, वो करना है, लेकिन कीड़े की समस्या आ जाए। अगर कीड़े की समस्या कब आव है, जब एक तो सोखा बन जाए है उस टाइम पर आकर, थोड़ा सा नमी हो ना खेत में, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आया करती, नोड़ा पता करके जल्दी उसमें जो भी खुराक देनी है वो दे दें, और छोटा जब ईंख होया कर तो उसमें गोबर की खाद भी बखेरी जा सके है, जो भाई थोड़ी सी मेहनत का अपना मन रखे हैं उसमें गोबर की खाद बखेर दिया करें, ऐसी बात नहीं है, वो भी फायदेमंद साबित होया करें। अड़ान का भी काम चल जा, अड़ तो ही है नहीं, लेकिन बोया भी जो कृषि यंत्र है उनते जाओ है, और उनते फिर उसकी नोड़ाई का काम चल जाया करे, इसने अलग और ध्यान करो तो कुछ छोटे छोटे ट्रैक्टर से आ रहे हैं जो आते चलाने के हैं, वो पैदल चलाना पड़े उनके पाछे पाछे, उनके पीछे रोटावेटर बंदे उड़ो आ करे, या फिर कुछ फाड़े टाइप मशीन बंदी उड़ो आ करे, जब वो चलाओ हैं तो वो मिट्टी ने भुरभरी कर दे है, और भुरभरी इस तरीके से कर दे है कि उसमें कोई भी घास फूस नहीं रहता, वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाए कि नरोड़, और पौधे के पास कोई घास है तो वो कसोले तली कड़ा करे, अगर पौधे के पास वो यंत्र लेके जाएंगे ना तो हो सकता है वो गहराई तक जाकर जो ईंख है हमारा उसकी जड़ा ने काट दे, और एक बार पौधे की जड़ कटी तो वो पौधा सूख जाएगा। मोटा मोटा काम तो उसके कर दें, बाकी जो पौधे का आसपास का जो थोड़ा बहुत क्षेत्र है उसे नोड़ा पता करके और साफ सुथरा कर लें, एक बार खेत निरोड़ हो जाए तो उसके बाद एक साथ के साथ सूखी निराई, हम जिसने कह इसका हाँ जो भाई मतलब नोड़ा का जो काम है वो सूखे में और हो जाए, ताकि खेत कति नरोड़ बन जाएगा, छोटा मोटा कोई खरपतवार पहली बार में रह गया होगा तो अगली बार में काबू में आ जाएगा, नरोड़ करके उसमें फिर नाइट्रोजन की मात्रा दें और पानी जितनी जरूरत है उतना पानी जरूर दिया जाए। आगे आने वाले टाइम में जैसे बारिश शुरू हो जाएंगी, मानसून जैसे ही आ जाएगी, तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है, फिर काम हमारा चल रहेगा। ईंख इसी फसल है कि ज़्यादा भी जब पानी हो जाए तो दिक्कत नहीं मान्या करता, अगर चमासा बरसेगा तो कितना भी पानी आ जाए कोई दिक्कत नहीं मान्या करता, लेकिन ईब इस मौके पर पानी देना जरूरी है, अगर ईब सोखा लग गया तो फिर समस्या आ जाएगी, बढ़ुआ रुक जाएगी, और एक बार बढ़ुआ रुक जाएगी तो वो आखिर तक जो उत्पादन का जो टाइम है उस टाइम तक वो दिक्कत खड़ी कर देगी। तो ये कुछ बात ही ध्यान करने की ईंख में। बाकी तो आज अपनी चर्चा का विषय रखेंगे धान की बिजाई, वैसे तो भाई ज़्यादा रोपाई पर ध्यान करें हैं, भाई पहले प्योद लगाओ हैं फिर उसने उखाड़ के दूसरी जगह लगाओ हैं, वो रोपाई का काम माना जा करें। बिजाई की जब बात आ है तो बिजाई में सीधा बीज जो कर और दूसरी फसल बोया करें, जिसने बनियों मान लिया कि जो कर बीज इसका गेहूँ बोया जा है या फिर दूसरा जो इसका अलग जो बीज हूँ वो बोए जा है, वो तरीका अपनाया जा है सीधी बिजाई धान की। उसमें किन किन बातों का ध्यान करना है कि उकर किस तरीके तक की करना है, कौन सी मशीन इस्तेमाल माओगे, कितना बीज सहीएगा, वो ध्यान वो भी करवाएंगे भाइयों का। लेकिन पहले रागनी सुन लें, कुछ मनोरंजन हो जाएगा, फिर बातचीत कर दे रहे। तो रागनी के गायक कलाकार होंगे शिव रतन शर्मा और उनके साथी।

सेन का नल हो गया। भाई हरिचंद

0: राजा मोर धवज की भी उस करसन ने अजमाश करी माया रूपी शेर संग में कुछ भोजन की भी आस करी शेर के छगावन खाचर खुद बेटे की लाश करी
1: शेर के छगावन खाचर खुद बेटे की।

0: यह तो भाई रागनी सुने, जिसके गायक कलाकार थे शिवरत्न शर्मा और उनके साथी। इन के बाद में एक रागनी और भी सुनांगे, लेकिन जिक्र चलिया था कि भाई जो धान की बिजाई है वो किस तरीके तक करनी है। किसान भाइयों, धान की खेती मुख्य रूप से दो विधि हैं, एक तो रोपाई की और एक सीधी बिजाई की। इन दो तरीके तक करी जा करें, सही टाइम में उचित बीज की मात्रा हो जाए और वैज्ञानिक तरीके अपना कर किसान धान की अच्छी पैदावार ले सके हैं। धान की बढ़िया बुआई का काम चल जाए, उसमें एक तो समय का जिक्र है। समय जून ते जुलाई का महीना बताया गया है, जो मानसून की शुरुआत है। उसके बाद भी हम कर सका हाँ, लेकिन ई बहाल का जो मौका चल रहा है यो ठीक है, ई बिजाई करना चाहो तो कर सके हैं। बिजाई के तरीके देखो, पहले तो सबसे पहले खेत में नर्सरी तैयार करी जा, पौधशाला तैयार करी जा और 25-30 दिन में उखाड़ के उसके बाद लगाई जा, वो तो है रोपाई का तरीका। और सीधी बिजाई का जो जिक्र आज हम करें हैं ना, जिसने DSR बोले हैं, डायरेक्ट सीडी ड्राई से भी हम कह इसका हाँ, इस विधि ते नर्सरी में पौधे तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। खेत ने एक सार करके जो सीड ड्रिल जो मशीन है उसने सीधे बीज बोए जा हैं, इसमें टाइम पे पानी आ जा, मेहनत कम रहेगी इसमें और टाइम भी कम लागे हूँ देखा जा तो। जब रोपाई का काम करेंगे ना तो 15-20 दिन तो लग जाए कि प्योद बोई है उस मोड़ में, उसके बाद फिर उसकी रोपाई करी जाएगी, फिर उसमें पानी खड़ा रखना पड़ेगा, कई सारे उसमें काम हुए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी हो जाए। लेकिन इसमें जो DSR है इसमें मेहनत इतनी नहीं होती। भाई बतेरे अपना रहे हैं, बहुत बढ़िया मुनाफा इससे लेने भी लाग रहे हैं, ज़्यादा खर्च भी इसमें नहीं होता और पैदावार भी न्यून हक कोई कम है, पैदावार भी इसकी ठीक रहे। 8-10 किलो बीज ले लिया और हाईब्रिड किस्म खातर तो 6-7-8 किलो इतने के बीज की जरूरत रहा करे, बहुत रहे यू। लाइना की जो दूरी है वह एक बिलातिक का मतलब फासला लाइना का मान सका हाँ, और बीज की गहराई का भी ध्यान हमने करना है कि जिस मशीन तांबू है तो 1.5-2 इंच गहराई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा गहराई में हमने नहीं बोना है, नहीं तो फिर अंकुर ठीक डालनी बनेंगे। और कुछ भाइयों के जो खेत थोड़े से इस हिसाब के हैं, नमकीन हिसाब के हैं, वो छीटा दे कर भी इसने बोने की कोशिश करा करें तो वो बोले चलो उनका अपना हिसाब है, लेकिन लाइन में बिजाई की सिफारिश करी जाओ है। जब इस तरीके से बोएंगे तो जो खरपतवार है वो भी कम होंगे और ठीक ठाक सारा बीज का अंकुर बन जाएगा, क्योंकि जब मशीन तो बीज पड़े हैं तो किसान भाइयों वो एक जगह पड़े हैं और उसके साथ कोई खुराक देने खातर कोई और खाद पानी उसमें दिया है वो भी उसके पास से पड़ जाएगा। अंकुर ठीक डाल हो जाए, जो छीटा दे के बिजाई करने का तरीका है ना, देखो वो गलत नहीं बताते हम उसने, लेकिन उसमें नुकसान के बना है कि कुछ बीज तो ऊपर है जाए और कुछ बीज नीचे चला जाए, उसमें थोड़ा सा बीज भी ज़्यादा डालना पड़ेगा और सारा बीज जमाव नहीं लेता उसमें। जो यो लाइना वाला जो सिस्टम है जिस नाम का आकरा कि भाई जाइए ला दिए जाया करें, या उसके बाद मशीन तो जो काम है वो काम ठीक माना गया है। सीधी बुआई में खरपतवार की समस्या ज़्यादा हुआ है, यह बात तो मानने की है कि सीधी जब हम बुआई करेंगे ना तो उसमें खरपतवार आ सके हैं, तो इसकी खातर बिजाई के तुरंत बाद अगले दिन सुबह खेत में जब थोड़ी सी नमी हो तो पेंडा मैथिलीन दवाई है उसका स्प्रे कर दो। 1 किलो खातर 1-1.5 लीटर पेंडा मैथिलीन दवाई बहुत रहेगी और 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। तो कुछ बात इसमें इसी आई है, एक तो खरपतवार ज़्यादा होंगे, लेकिन खरपतवार की खातर साथ के साथ दवाई का जब इस्तेमाल हो जाए तो फिर खरपतवार भी नहीं होंगे। और बीज का जिक्र चला था कि भाई 1.5-2 इंच ज़्यादा गहराई तक, उस तो नीचे की गहराई तक बीज नहीं जाना चाहिए, न्यू नहीं है 3-4 इंच की गहराई तक बीज पहुंच जाएगा नहीं वो फिर जाम बनेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। और सिफारिश करी जाओ है लाइना में बिजाएगी, जब मान ले भाई न्यू मानक वह छीटा दे के करेंगे तो उसमें बीज भी ज़्यादा चाहिएगा, कुछ विशेष कारण बने हैं ना तो उसमें छीटा दे के बिजाई आप कर सको हो। कुछ भाइयों का दिक्कत है नमकीन जो जमीन है, कुछ नमक ऊपर आ जाए है, पापड़ उसका करड़ा हो जाए ऊपर दें वो नहीं लिखन पाता जमाव में दिक्कत आ हो, तो वो तो कर सके हैं, बाकी कोशिश करें इसकी के कतारा में बिजाई करें। 8-10 किलो बीज की जरूरत रहेगी और जब मान ले हाईब्रिड किस्म है तो 6-7 किलो बीज भी बहुत रहेगा। टाइम पे पानी भी देना है, इसमें मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं बनती इसमें, और इतने ज़्यादा पानी भी नहीं देने कि जितने रोपाई वाला जो मौका है उस टाइम पे दिए जाया करें। तो यो तरीका अपना सके हैं भाई। गेहूँ में भी जिक्र कराया करें जो जीरो टिलेज दे हैं, लेकिन कुछ भाई के कहते हैं कि इसमें इतना पैदावार को नहीं बनती, बने है ऐसी बात नहीं है अगर ठीक ठाक हो जाए तो। और वो ही बात है धान का, धान भी बिजाए सीधी बिजाई करें, DSR की तकनीक ना अपनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। खेत हमने समतल करना पड़ेगा पहले, तो इस बात का ध्यान करें खेत में थोड़ी सी नमी हो। और जो सीड ड्रिल जो मशीन हम जिसने बोला है ना कि बीज बोने की जो मशीन है उसके हमने जो धान है वो हम बोस का, हाँ आगे फिर इतनी ज़्यादा संभाल की जरूरत नहीं। एक सीधा सीधा इसमें की है कि पेंडामेथ्रिन दवाई लेकर 1 से 1.5 लीटर 200 लीटर पानी लेकर उसका छिड़काव कर दें, फिर खरपतवार भी नहीं होंगे। और छोटा मोटा कोई खरपतवार बाद में हुआ है तो उसने निकाल भी सका, हाँ जब हमने वो लाग गया है कि जय ये ला रखे हैं उसके कितने साइड में कोई डोली डाली पे कोई सा दिक्कत है उसने साफ कर दिया। और संभाल जाए ठीक ठाक हो जाए तो रोपाई वाली जो धान है उस तो यहाँ कम नहीं रहती, ठीक निकल गया है, इतना इसमें खर्चा भी कम बना है। जब रोपाई वाली बात करा तो उसमें तो देखो खर्चा कितना बनेगा कि भाई शुरू में भाई उसमें गार्ड मारो, पानी दो और उसमें खुराक देनी है, फिर लाने वाले के देने हैं, प्योत बोई है उसमें भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़े है, फिर कुछ गर्मी के कारण भी कुछ पौधे उखेड़ा ले जाए हैं, फिर बाद में दोबारा भी लगानी पड़ जाए अगर, तो उसमें दिक्कत बहुत सारी आ सकें, लेकिन इसमें दिक्कत कुल मिलाकर कम है। तो यो तरीका भाई अपना सकें हैं। चलो टाइम रहेगा तो और भी जिक्र करेंगे, एक रागनी का और जिक्र चला था, गायक कलाकार एक बार फिर शिव रतन शर्मा और उनके साथी
1: भाई सम

फेरनो बेटा का एक बाप हो, पेट भरण पावेगा वीर मृद हो न्यारे न्यारे ईसा बखतियावेगा। घर घर में पंचायती हो गुण किस

धर्म घटेदा धन के कारण कुल की रीत रहेगी, दो दो दिन की यारी होगी ना सच्ची प्रीत रहेगी। फिर धर्म का पलड़ा रहेगा हार में पाप की जीत रहेगी, फिर बहन भाई के

कहे लक्ष्मी चंद छतरा अपने दादा और वोट का राज रहेगा, मूड मंत्री रहा करेंगे कड़े समाज रहे, रिश्वत कारण चले कचहरी वक्त न

शिवरत्न शर्मा और उनके साथियों के गायुड़ भाई अनरागनी सुन ली और जिक्र कर रहे थे जो धान की बिजाई है उसके बारे में। उसमें कई सारी बात आई थी, 8-10 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी, जो हाईब्रिड किस्म है तो 6-7 किलो बीज भी बहुत रहेगा। खेत एक सा करना है और जो सीड ड्रिल जो मशीन है उसने बिजाई कर सका। हाँ, जो खुड्डा का फासला है वो एक बिलाते का रह जाए, उसमें 7-8 इंच बताया गया है, वो जरूरी है इतना, क्योंकि ऊपर जाकर फिर जब वो पौधे निकलेंगे तो फैलाव के लिए उन जगह भी चाहिए। और उसके बीच में जो ड्योली है उसमें कोई छोटा मोटा खरपतवार होगा तो उसकी कुछ निराई गुडाई करनी पड़ जाए तो वो भी काम चल जाएगा। इसमें मेहनत कम करनी पड़े है, पानी की भी कम जरूरत पड़े है, लेकिन इतना जरूर है कि लकड़ा इसका ठीक बन गया है। जिन भाइयों के खेती से हिसाब के हैं कि वो रोपाई का काम नहीं करवा सकते, भाई उसमें ट्रैक्टर दसे हैं या फिर कोई ज़मीनी से हिसाब की है कि नहीं उसमें वो रोपाई का काम चलता, तो डायरेक्ट जो बिजाई है, सीधी जो बिजाई है उसके अपना तरीका अपना सके हैं। और इतनी जितनी को लग है कि भाई निराई गुडाई हमने उसमें करनी पड़ेगी वो उसमें ज़रूर कर दें, और जो दवाई का जिक्र आया था पेंडा मेथिलीन का वो भी लगा सके हैं ताकि खरपतवार ना हो। चलो बाकी और सांझ ने कृषि जगत कार्यक्रम में बैठेंगे, फिर बातचीत होंगी। ई सारे मन भैया ने राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना? मेरी वेव 262.64 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.64 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:17 हुए हैं। हमारी तीसरी प्रसारण सभा अब आरम्भ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

0: युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके साथी रिशिता का नमस्कार।
1: आपके साथी विशाल का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, आज है 7 जून और आज हम मना रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो हर वर्ष 7 जून को ही वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा के रूप में घोषित किया था। यह जो दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल करीब 60 करोड़ लोग, यानी हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति, असुरक्षित भोजन की वजह से बीमार पड़ते हैं, जिनमें से लगभग 4.2 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। यह दिवस दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है।
1: बिल्कुल, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इस दिवस का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित भोजन अत्यंत आवश्यक है। असुरक्षित भोजन कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। भोजन की शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखने से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। यह दिवस खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और वितरण में सुरक्षा मानकों में से पालन पर जोर देता है। खाद्य पदार्थ की एक्सपायरी डेट अवश्य जाननी चाहिए तथा जो मिलावटी खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें सुरक्षित भोजन के महत्व की याद दिलाता है। स्वस्थ समाज और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा विशाल ने कि आज सुरक्षित भोजन होगा तभी कल स्वस्थ विश्व होगा। साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें याद दिलाता है कि हर भोजन एक जिम्मेदारी से शुरू होता है। सुरक्षित भोजन केवल बीमारी रोकने का मामला नहीं है, यह स्वास्थ्य की रक्षा करने, पर्यावरण की रक्षा करने का भी प्रश्न है। चलिए साथियों, आज है रविवार का दिन और रविवार के दिन हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं युवा पसंद। तो कार्यक्रम में पहला गीत की फरमाइश आई है हमारे पास
1: करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, हरिपाल रोड, मीनाक्षी तिवारी। कैथल से मधु नायक, रोहतक से महेंद्र शाह, हिरेंद्र, जितेंद्र, हर्षित, मानसी।
0: साथ ही चरकी धादरी से जगनेश सांगवान, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद पुष्पेंद्र, भिवानी से आप हैं जितेंद्र खेड़ा और बगबुड़वा पुत्रिया से आप हैं नरेन और कुसुम नेताम। ये गीत है साथियों फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से, आवाज़ है अरिजीत सिंह की, संगीत है रोचक कोहली का और बोल है कुमार के।

0: ये गीत था फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से, आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, संगीत था रोचक कोहली का और बोल लिखे थे कुमार ने।
1: साथ ही जो अगली फरमाइश आई है वो है बाटापारा दतरंगई से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक जावेंद्र, आदर्श नगर अमलोट से राज शर्मा, मीना योगेश, सौरव साइना निवान, बेरडी से हुक्म करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची तन्नू।
0: खोखरा वाली गांव से विनोद, विशाल बरासा, विकास रोशनी, शगुन बरासा, रायगढ़ से आप हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह और ऋतु सिंह, नंदा शहर से सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा संधू, प्रतीक्षा और मैक्स, महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे।
1: साथ ही जो इनकी फरमाइश है वो है फिल्म मोहब्बतों से, गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने। आइए साथी सुनते हैं गीत।
2: और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म मोहब्बतों से। गाया था लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था जतिन ललित ने।
1: बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की तरफ, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत है आर डी बर्मन का और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। और साथियों, इस गीत की फरमाइश आई है कैथल से अमनदीप, गांव राजापुर से नयन प्रकाश, शारदा, सीताराम, सतबीर, संतोषी, कविता, आरती मरकाम। छत्तीसगढ़ से आप हैं इंद्रमान सिंह, अनुपम, राम सहोदर। साथ ही गोविंदपुरा सीकर से आप हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और रिंकी शेखावत।
0: बठिंडा से मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र, वीरेंद्र, सिमरन, प्रेम। गोला बाजार बक्सर से अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। कोटो नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी।
1: आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

0: साथियों, ये गीत था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा मूवी से। आवाज़ थी किशोर कुमार की, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने।
1: साथियों, जो अगली फरमाइश है वो है दुबिहा निवेदा गाजीपुर से, प्रत्येक राय रोशनी प्रांजल। आदर्श गांव बल्याली, जिला भिवानी हरियाणा से, दर्शन लाल बंसल, सुदेश, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश, तमन्ना बंसल।
0: लुम्बिनी अकोला से राहुल बंसूड, सम्यक शरण मीरा, कलानौर से यहाँ पे नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा, महाराष्ट्र से निर्मला और विशाल, पंजाब से स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप। आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।
1: फिल्म बॉर्डर से गीत है, गाया है रूप कुमार राठौड़ ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, लिखा है जावेद अख्तर ने। आइए साथियों सुनते हैं गीत।

0: साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म बॉर्डर से। गाया था रूप कुमार राठौर ने, संगीत दिया था अनु मलिक ने, लिखा था जावेद अख्तर ने।
1: इसी के साथ साथियों, कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अपने भोजन का ध्यान रखें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। एक्सपायरी डेट चेक करें, खाना पीना अपना अच्छा रखें और सेहत का ध्यान रखें। इसी के साथ साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। उम्मीद है आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जाँच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पहले आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे, सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रम में वंचितों को वरीयता विषय पर बातचीत। वार्ताकार होंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव। रात्रि 10 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 6:20 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ग्रामीण संसार कार्यक्रम सुनेगा शाम 7:00। लोक संगीत कार्यक्रम में रात 9:30 पर आप सुनेंगे किस्सा बंदेवी। कलाकार होंगे प्यारेलाल और साथी। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:25 पर। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब कल के कार्यक्रमों का विवरण। सरकार के 12 वर्ष पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में किसान सशक्तिकरण पर बातचीत आप सुनेंगे। वार्ताकार होंगे किसान एवं कल्याण मंत्रालय के सचिव। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। साप्ताहिक समीक्षा आप सुनेंगे 6:30 पर, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:35 पर। युवा संसार कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 पर। 6:20 पर होगा कार्यक्रम कृषि जगत। 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम ग्रामीण संसार। खेत कल्याण कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:30 पर। प्रातः 7:15 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाकिर हुसैन द्वारा राग बसंत मुखारी। इसी कार्यक्रम में रात्रि 10:00 आप सुनेंगे राग यमन। कलाकार होंगे DK दातार। लोक संगीत कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 8:30 पर। रात 8:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं प्रातः 9:00, दोपहर 1:10 पर और 7:45 पर। एक फिल्म से कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:15 पर। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ के 2 विभागों की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखी सरकारी निधियों के दुरुपयोग व हेराफेरी के मामले के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। केंद्र सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारत में LPG वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुरुक्षेत्र में लोगों से आवाजाही के लिए पर्यावरण अनुकूल साधनों का प्रयोग करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। आज हांसी और हिसार में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सभी से योग अभ्यास करने की अपील की और पलवल में फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और नगर निगम चंडीगढ़ और क्रेस्ट चंडीगढ़ की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखे 661 करोड़ रुपए की सरकारी निधियों के दुरुपयोग एवं हेराफेरी मामले की चल रही जांच के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। CBI ने तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री जब्त की। CBI अधिकारियों के अनुसार 6 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ लोक सेवकों और एक निजी कंपनी और इसके निदेशक के आवासीय परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि खाते खोलने, धन के हस्तांतरण और निधि की हेराफेरी में सरकारी अधिकारियों की बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत थी और सरकारी अधिकारियों को इसके लिए कथित अनुचित लाभ मिले। नोएडा स्थित एक कंपनी के खाते में हेराफेरी की राशि भेजी गई, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। CBI ने बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद पंचकूला की CBI अदालत के समक्ष प्रथम आरोप पत्र दायर कर चुकी है और जल्द ही अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज कुरुक्षेत्र में ईंधन बचाओ कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में गुरुकुल पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भूमिगत जल बचाने और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक एवं गौ आधारित खेती की ओर लौटना समय की आवश्यकता है।
2: इस समय हमारी धरती बंजर हो, लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। किसान इतना यूरिया, DAP कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसानों से आग्रह करेंगे आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, गौ आधारित खेती की ओर लौटें, जिससे हमारा भूमिगत पानी भी बच सके, पर्यावरण और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके और धरती माता का भी स्वास्थ्य बच सके।
0: उन्होंने कहा कि आज विश्व स्तर पर तेल संकट गहरा रहा है और भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर तेल आयात करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप सभी नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि ई रिक्शा का उपयोग बढ़ाने से एक और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा तो दूसरी ओर इससे जुड़े जरूरतमंद परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने लोगों से ई रिक्शा और अन्य पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हांसी में विशेष योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शिविर में बतौर मुख्य अतिथि योग अभ्यास किया। योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व निर्धारित तैयारियों में पूरा देश लगा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 1 जून से गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने सभी से योगाभ्यास करने की अपील की।
3: आज 12वें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के यहाँ पर सभी लोग पहुँचे। देखिए, बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ हो तो आपके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उसका समय देना, और समय देने के लिए हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने इस तरह की विद्या ये हम लोगों को विरासत में दी हुई है। बस हमने थोड़ा उस पर चलने का साहस ये रखने की जरूरत। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि ये योग का जो अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास में सब लोग शामिल हो।
0: हरियाणा के आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज हिसार स्थित टाउन पार्क में भी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों द्वारा योग के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक लाभों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने सभी को योग के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि शरीर स्वस्थ नहीं तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ कुछ मायने नहीं रखती, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। श्री महिपाल ढांडा ने आह्वान किया कि योग अभ्यास में अधिक से अधिक लोग शामिल हों। पलवल में फिट इंडिया एवं फिट हरियाणा अभियान को लेकर आज साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साइकिल रैली हुड्डा सेक्टर 2 पलवल से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में संपन्न हुई। रैली के दौरान श्री गौरव गौतम ने लोगों को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।
4: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा एक कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया को लेकर चल रहा है, संडे ऑन साइकिल, उसको लेकर हमारे युवा साथियों के साथ आज हमने साइकिल यात्रा की है। और ये साइकिल यात्रा हमारे भारत को स्वस्थ रखने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए कि वो साइकिलिंग करें, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, व्यायाम करें, जिससे वो स्वस्थ रह सके। और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना कर सकता है। और स्वस्थ रहोगे तो सब काम कर पाओगे। अपने जीवन में 1 घंटा जरूर चाहे साइकिलिंग करें, चाहे व्यायाम करें।
0: इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। जींद के नागरिक अस्पताल के प्रांगण में आज सामाजिक संस्था हेल्प ए मिशन ही एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 68 लोगों ने रक्तदान कर इस महादान में अपना सहयोग दिया। संस्था के पदाधिकारी रजनीश ने बताया कि नागरिक अस्पताल से रक्त की कमी होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया।
5: और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम गर्मी का मौसम है और गर्मी अत्यधिक होने के कारण शहर में ब्लड कैंप बहुत कम लग रहे थे, और सोमवार को हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से यहाँ से फोन आया था कि यहाँ पर ब्लड की काफी कमी हो गई है, कृपया आप ब्लड कैंप लगाइए। तो उसी कड़ी में हमने रविवार के दिन यहाँ पे ब्लड कैंप लगाया है। आज हमारा यहाँ पर 60 से 70 यूनिट का टारगेट रखा गया है, तो अभी तक लगभग 40 के करीब यूनिट यहाँ हो गई है और उम्मीद है कि इसका 80 यूनिट हो जाएगी।
0: हरियाणा विधानसभा की मेजबानी कल से 10 जून तक भारतीय क्षेत्र के उत्तरी जोन 2 के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज विभिन्न राज्यों के पीठासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आगमन शुरू हो गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ के 2 विभागों की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखी सरकारी निधियों के दुरुपयोग व हेराफेरी के मामले के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की, और पलवल में फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
6: हो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
8: आरबीआई कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: किरसे जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। किसान भाइयों, इब अगली फसलों की हम तैयारी कर रहे हैं और कुछ भाई तो बाजरा बोने की सोच रहे होंगे, कुछ ज्वार की भी काश्त करनी है, कुछ धान लाने की सोच रहे हैं, किसी ने ईख बो रखा है। वो जिसी हमारी जमीन है, जिसा हमारा मौका है, जोन से हमने फसल ठीक लग गया है, उसका हम बुआरा करा हाँ। बात आओ है कि कुछ ऐसी फसल हैं जिन ते पानी की बचत रह जाए है, अगर उन फसलों का हम चुनाव करा हाँ। तो मान लो हमने बाजरा बो दिया तो पानी कम देना पड़ेगा, ज्वार बो दी

0: बरसात होने वाली है तो फिर रोक लें थोड़ा साथ ने, उस जगह पर कोई दूसरी फसल हम बोस कहाँ। और धान इसी फसल है पानी में रह के पाकने वाली है, ज़्यादा पानी की जरूरत रहे है, बराबर में जो दूसरी फसल खड़ी है कई बार उन्हें पानी नहीं मिलता, इस डर में कि फसल कदे कमज़ोर होए हम धान हम पानी दे जावा हाँ। जल प्रबंधन की जब बात आवे है ना तो उसमें ये बात आवे है कि सारी फसल ने पानी ठीक मिल जा और आने वाले टाइम खातर हम पानी ने बचा भी इसका। कई बार बारिश कम हुआ है, जिस साल बारिश कम हुआ है और धान लाग रहे हो तो जिन ने ला रखे हैं ये वून ने बेरा लगा है कि वो किस तरीके से तो उसने पकाव है। ट्यूबवेल के पानी पहले इंजन और पंखा बांध के चलाया कर दे, पानी की वो खिंचाई करदा, फिर जल स्तर नीचे चले गया नहीं बनी बातें, फिर मोटर माटर बांधनी शुरू कर दी, थोड़ा सा काम उन्ना चला, इब और भी जल स्तर जब नीचे चला गया तो समरसिबला का दौर आ गया। इब समरसिबल भी कितने एक दिन काम चलाओगे, जमीन के नीचे जब पानी की कमी हो जाएगी तो वो भी कम निकाल लेंगे। तो हमने आने वाले समय खातर पानी की बचत करनी है, जितना पानी हम बचा सकें वो हमने कोशिश करनी है, और फसल भी हमारी ठीक हो जाए यो भी हमने विचार करना है। तो इसमें फसल चक्कर अपनाना है, ऐसी फसल लगानी है जिनमें पानी कम लग गए और मुनाफा ठीक ठाक उसमें रह जाए। ये कुछ ध्यान करने की बात थी कि जो जल प्रबंधन की बात आव है उसके बारे में। फिर बात आव है कि हम परंपरागत खेती करते हुए कोई दूसरी जो कृषि क्रियाएं हैं, कृषि के जो काम हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान चला जा है। इसमें एक तो सब्जी आव है, सब्जी का काम कोई माड़ा नहीं है, बहुत सारे भाई करे हैं और जो करे हैं जिन्हें मजा आ रहा है वो मुनाफे भी अच्छा लिए हैं। बागवानी का काम भी करे हैं बहुत सारे भाई, बाग लगा ले हैं, बिक्री ठीक ठाक हो जा, शहर नज़दीक हो, लान ले जाने के साधन ठीक हो, तो फल कोई सस्ता नहीं रह रहा, बहुत महंगा फल बिक रहा है। डेयरी फार्मिंग कर ले हैं, पशुपालन का काम कर ले हैं, मछली पालन का काम कर ले हैं, लेकिन एक बात जरूर आ है कि जो भी काम करे उसका प्रशिक्षण हमने पहले लेना बहुत जरूरी हो जा है। बतेरे भाई से हैं कि काम तो शुरू कर दिया लेकिन उसकी जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में थोड़ा बहुत नुकसान हो गया और फिर वो और अनशिक्षा के देव हैं अक यू काम तो ठीक को ना, वो डरान लाग जाए हैं, लेकिन इस बात ने नहीं देखते कि भाई जो तने काम करा था इतना बढ़िया प्रशिक्षण तेरे पास नहीं था, बगैर ट्रेनिंग के कोई काम करा जा है तो वो चलो भागन लागे का है, फायदा हो भी जा लेकिन उसमें नुकसान के चांस ज़्यादा बनया करें। तो पहले प्रशिक्षण ले लें उसके बाद कोई काम करें। ये बात आओ है मधुमक्खी पालन की, एक बातचीत सुना गया आज पूर्व प्रसारित है, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बता रखी इसमें कि इस तरीके से हमने काम करना है, भाई यो तरीका अपनाओगे तो मधुमक्खी पालन तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा ले लेंगे। और जो मधुमक्खी पालक भाई मारदू राव हैं उन तो बातचीत हम करा हाँ वो तो खूब नहीं बताओ हाँ भाई खूब मुनाफा है, लेकिन मुनाफा कब है, जब एक अकेला सेहत ना लेकर और चार डाल की चीज़ जब वो ले हैं उन मधुमक्खियाँ ते जब वह फायदा रहे वो ट्रेंड हो रहे हैं। उन भाइयों का मुलाकात करा, अगर हमने भी यो काम करना है तो काम यो करके देखें, छोटे स्तर पर तो शुरू करके देखें फिर थोड़ा सा बड़े स्तर पर चले जाएं तो जब वह जाके कुछ फायदा रह सके है। तो पहले तो बातचीत सुन लिया फिर मनोरंजन भी करवाऊंगे भैया का।
1: भाइयों बातचीत करेंगे गर्मियों में मधुमक्खियों की देखभाल के बारे में और इसकी जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर योगेश कुमार जी। आप मधुमक्खी विशेषज्ञ हैं कीट विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। डॉक्टर साहब स्वागत आपका।
2: धन्यवाद सुरेंद्र भाई जी।
1: डॉक्टर साहब देखो जो एक सहायक धंधा हमारे जो किसान भाई हैं साथ के साथ में कर रहे हैं, खेती के साथ साथ में सहायक धंधा भी कराया जा रहा और उसमें जो मधुमक्खी पालन का है वो सहायक धंधे के रूप में लिया जा है।
2: ठीक।
1: और बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इसी के ऊपर आश्रित हैं।
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: और उनका काम ही यही है और समय समय पर अपनी जो मधुमक्खी हैं उनकी देखभाल करना, उनका कारोबार भी कई जगह तो बहुत अच्छा चला गया है
2: जी।
1: तो अब जो जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में विशेषकर हम मधुमक्खियों की देखभाल कैसे करें,
2: ठीक
1: इसके बारे में बताओ।
2: सुरेंद्र भाई जी सबसे पहले मेरा नमस्कार बी कीपर्स को आपको। गर्मियों का जो समय है मधुमक्खियों के लिए ये सबसे दिक्कत वाला समय होता है गर्मियों का
1: जी।
2: बाकी सीजनों में तो मधुमक्खियाँ आराम से चलती रहती हैं, मधुमक्खी पालक को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती।

0: लेकिन गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के साथ साथ बाहर फूलों की उपलब्धता भी ना के बराबर होती है।
1: हाँ कम हो जाते हैं इस समय पर, क्योंकि और
0: हाँ
1: दूसरी फसल बहुत कम
0: जी
1: हो
0: जी तो इस वजह से फिर मधुमक्खी पालक को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए उन्हें बड़ी सावधानी से अपने गर्मी में मधुमक्खी वंशों को बचाना पड़ता है।
1: जी।
0: तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही गर्मियाँ आने वाली हों तो उस समय आपने मधुमक्खी पालक ने धूप में रखी हुई मधुमक्खियों को छाया में लाना है,
1: जी
0: और वो एकदम से उठा के हम बक्से को नहीं रख सकते। भाई मान लो अब यहाँ बक्सा पड़ा है और आपने आधा किला या एक किला दूर रखना है, तो ये नहीं कि एकदम से सीधा आप उठा के रख दो। तो आपको रोज 2 या 3 फुट रोज लेके आना है
1: अच्छा।
0: धीरे धीरे। तो जैसे आपको पता है अभी अब 15 दिन बाद गर्मी आने वाली है, तो आप 15 दिन पहले से ही डब्बे को अपना मुंह उठा के और वहाँ छाया में की तरफ लाना शुरू कर दो।
1: उसमें डॉक्टर साहब एक एक दो दो फुट मान लो डिगाण में, तो फिर वो हमारा जो डिब्बा है वो कभी धूप में आएगा कभी छाया में आएगा, ये दिक्कत नहीं बनेगी?
0: नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं, मैं पहले से ही कह रहा हूँ ना भाई, गर्मी आने
1: आने
0: से
1: से
0: पहले
1: पहले
0: ही,
1: पहले।
0: तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और ये करते हम इसलिए हैं क्योंकि जो बाहर जाती हैं मक्खियाँ 21 दिन से बड़ी होती हैं, तो वो बाहर खेतों पे जाती हैं और उनको अपने डब्बे की पहचान होती है और वो वहीं जाती हैं।
1: जी
0: अगर हम एकदम से डिब्बा उठा के दूर रख देंगे आधा किला या एक किला, तो वो जो खेतों में मक्खियाँ गई हुई हैं, फोरेजर भी बोलते हैं जिनको, वो फिर अपनी पुरानी जगह पे आएंगी
1: भ्रमित हो
0: और
1: जाएंगी।
0: हाँ, और फिर वो या तो वहीं मर जाएंगी या दूसरे डिब्बे में घुसने की कोशिश करेंगी। तो फिर आपस में दूसरे डिब्बे में घुसेंगी तो हो सकता है आपस में दोनों मक्खियाँ ओपरी मक्खी पहचान लेंगी और लड़ाई हो जाती है
1: वो
0: फिर।
1: झगड़ा हो जाता
0: तो
1: होगा।
0: वो इसलिए 2-2 फुट 3-3 फुट रोज उनको स्थानांतरित करके और छाया में लाना है।
1: अच्छा।
0: एक बात तो ये बहुत ज़रूरी है, ये गर्मी आने से पहले ही हमें कर लेना है इंतजाम भी, गर्मी जब जब शुरू होने वाली है तो उस समय तक हमारे छाया में पहुंच जाए।
1: जी
0: दूसरी बात ये है कि सीधी लू नहीं पड़नी चाहिए भी, जैसे आपने जहाँ डिब्बे रखे हैं उसको हम अपायरी बोलते हैं, तो उसमें सीधी लू नहीं आनी चाहिए, लू वाली हवा, मतलब कोई ना कोई ओट हो,
1: तो
0: बाढ़
1: उसका
0: हो।
1: मतलब कोई जैसे कोई पल्ली लगा दी एक साइड में जिस साइड से लू चलती है, विशेषकर पश्चिम साइड से लू चलती है।
0: हाँ नहीं, पल्ली की कोई ऐसी बात नहीं, पल्ली का तो दूसरा मैं अभी जिक्र करूँगा,
1: अच्छा।
0: लेकिन इसमें ये है कि या तो पेड़ हों जैसे सफ़ेदे लगे हुए हैं, या फिर खेत की बाड़ है या कोई दीवार की ओट है, तो
1: अच्छा
0: उससे मतलब ये अभी सीधी लू नहीं आनी चाहिए
1: अच्छा
0: डब्बे में।
1: ठीक।
0: तो दूसरा काम ये करना है हमने, और तीसरी बात ये है कि गर्मियों में हमने मधुमक्खी वंशों का निरीक्षण तभी करना है जब आवश्यक हो। मतलब कई बार जैसे रूटीन में हम करते रहते हैं दूसरे सीजनों में, तो वो हमें नहीं करना भाई। आवश्यकता मतलब गर्मी में आपने यही देखना है कि भाई अंदर भोजन है,
1: या
0: रानी ठीक है
1: जी
0: नहीं है, तो वो बस आवश्यकता पड़ने पे ही आपने मधुमक्खी वंश का निरीक्षण करना है, और वो भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके करके, और डिब्बे को कॉलोनी को दोबारा बंद कर देना है।
1: जी
0: ये नहीं कि भाई आप डिब्बा देख रहे हो और आप खड़े हो गए, कोई आ गया आपका मित्र, उससे बात करने लग गए, या ज़्यादा समय लगा दिया, बीच में बीड़ी पीने लग गए, तो ऐसा नहीं कि भाई उससे फिर किसी डिब्बे में अगर शहद है तो वो दूसरे डिब्बे की मधुमक्खियों को गंध आ जाती है और वो फिर आपस में रोबिंग हो जाती है, लड़ाई वाला
1: जी
0: काम हो जाता है।
1: जी जी
0: तो जल्दी से जल्दी निरीक्षण करके अपना तभी करें जब अति आवश्यक आवश्यक हो,
1: जी
0: और निरीक्षण करके अपना कॉलोनी को
1: बंद
0: आप
1: कर दें
0: बंद कर दो।
1: जी।
0: इसके बाद जो आप पल्ली वाली बात कर रहे थे, तो पल्ली वाली बात में हमने अपने यूनिवर्सिटी में तजर्बे लगाए, और पल्ली भिगो के जैसे हम एक बाल्टी में पानी लेके पल्ली काट लेते हैं हम, जितना जो हमारे डब्बे का साइज है
1: जी
0: चारों तरफ से 6-6, 8-8 इंच 7-7 इंच फालतू काट लेते हैं, और उसको एक बाल्टी पानी लेके पल्ली को भिगो के जैसे हम घर में पोछा लगाने के लिए निचोड़ते हैं पोछे को, तो उसी तरह लगभग निचोड़ के और आपने ऊपर का ढक्कन हटा के डब्बे का और भीतर का ढक्कन हटा के जो फ्रेम है, फ्रेम की जो ऊपर की फटियां हैं टॉप बार बोलते हैं जिनको,
1: हाँ
0: उस पे डाल देनी है आपने,
1: अच्छा।
0: और ऐसा ना हो कि भी टप टप पानी करे, मतलब इतना निचोड़ दो कि कि अभी पानी टप टप ना करे,
1: यानी कि टपकना नहीं चाहिए,
0: टपकना नहीं चाहिए, क्योंकि टपक के फिर वो डब्बे में जाएगा तो उससे हो सकता है भाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए
1: जी।
0: तो वो आप लगा के टो ऊपर वाली फट्टी पे और फिर इनर कवर लगा दो और फिर टॉप कवर लगा दो।
1: अच्छा।
0: तो ये कार्य अगर आप दिन में 3 बार कर सको, लेबर तो है लेकिन उसके बराबर में जो हमारी कलोनियाँ बचेंगी वो ज़्यादा फायदा है। तो वो आपने ये 3 दिन में 2 या 3 बार मौसम के हिसाब से देख के आपने भिगो के और पल्ली देनी है। इससे मधुमक्खियों को बहुत मदद मिलती है तापमान को नीचा लाने में, क्योंकि मधुमक्खियां अपने कलोनी का तापमान 34 डिग्री के आसपास रखती हैं सेल्सियस, और बाहर 48 डिग्री 47 डिग्री पहुंच जाता है, अब की बार तो और भी ज्यादा गया,
1: ज्यादा ही था।
0: तो पल्ली अगर आप दोगे तो मधुमक्खियों को बहुत मदद मिलती है तापमान को गिराने में, और आपका वंश जो है वो मधुमक्खियों का ठीक चलता है। हाँ, लेकिन एक ध्यान रखना आपने कि जब बारिशें आ जाती हैं, मतलब मानसून का सीजन आ जाता है, और मानसून का भी यही प्रबंध होता है गर्मियों वाला लगभग, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून और गर्मी साथ साथ चलती हैं, तो उस समय आपने भीगी हुई पल्ली बंद कर देनी है देनी,
1: क्यों उसमें फिर जो
0: उसमें ज्यादा नमी हो जाएगी और फिर थोड़ा सा बीमारियों का और उसका डर रहता है। और कई बार जैसे फट्टी पे अगर थोड़ा हरापन आ गया है तो उसकी कोई बात नहीं, उससे न मत घबराओ, मधुमक्खी पालक को उससे नहीं घबराना चाहिए, वो थोड़ा सा बस, वो कोई ऐसा नहीं है कि उससे बीमारी फैल जाएगी। जब आप पानी की चीज रख रहे हो लकड़ी पे तो थोड़ा सा हो सकता है
1: तो
0: हरापन थोड़ा सा आ जाए,
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लू जैसे आजकल मौसम चल रहा है और आगे जून में चलेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती पल्ली भिगो के, और बहुत ही मदद मिलती है। पहले हम पल्ली टॉप कवर के ऊपर रख देते थे भिगो के, अब मैं हमने तजर्बे लगाए और यही है कि आप जो जैसा जो मैंने बताया
1: उससे नीचे रख,
0: उससे
1: नीचे रख,
0: इनर कवर से नीचे और जो फ्रेम है उनके ऊपर
1: जी,
0: तो इससे बहुत मदद मिलती है तापमान को गिराने में मधुमक्खियों को।
1: ठीक।
0: अब इसके बाद बार भोजन की कमी होती है, और भोजन की कमी की वजह से मधुमक्खियां मरती हैं, तो आपने भोजन देखना है, निरीक्षण ही यही इसीलिए करना है आपने कि अभी रानी ठीक है अंदर, अंडे देना रानी इस समय बंद कर देती है, तो आपने देखना है भी भोजन की कमी है तो आपने भोजन की पूर्ति मधुमक्खियों के लिए करनी है। पर यह नहीं कि भाई आप सीजन जैसे आजकल मधुमक्खी करने लग पालक करने लग गए कि अच्छा सीजन है बाहर फूल पौधे हैं तो भी चीनी का घोल दिए जा रहे हैं, वो काम हमें नहीं करना। तो गर्मियों में सिर्फ मधुमक्खियों को बचाने के लिए चीनी का घोल हम देते हैं
1: जी,
0: और उसके लिए घोल कैसे तैयार करना है, 1:1 का मतलब, कहने का मतलब मेरा कि भाई अगर आपने 5 किलो चीनी ली है तो 5 लीटर ही आपने पानी लेना है।
1: अच्छा।
0: पानी को अच्छी तरह से उबाल लो और उसमें चीनी घोल लो।
1: 5 लीटर पानी में 5 किलो पानी।
0: हाँ जी।
1: चीनी।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा।
0: अगर 10 लीटर 10 किलो चीनी मिलानी है तो 10 लीटर ले लो, मतलब जितना पानी उतनी चीनी
1: जी।
0: वो लेके और पानी गर्म अच्छी तरह से उबाल के और चीनी घोल दो और उस घोल को ठंडा होने दो, और अब ये मधुमक्खियों को हम देते हैं। तो देने का तरीका सबसे बढ़िया जो मैं मानता हूँ, जो पहले हम करते भी थे, वो यही है कि आप एक एक खाली फ्रेम मधुमक्खियों के डिब्बों से निकाल के, या आपके पास निकला हुआ बाहर है तो उसमें उसको निकाल के जिसमें अंडे नहीं बच्चे नहीं ना ही कोई भोजन है,
1: बिल्कुल खाली,
0: उसमें मग की मदद से आप फ्रेम भर लो
1: जी।
0: फ्रेम आपने भरने हैं दूर अपायरी से दूर, मतलब जहां आपकी मधुमक्खियां रखी हैं वहां से आप कोशिश करो 1 किला दूर किसी कमरे में बैठ के आप फ्रेम भर लो।
1: अच्छा।
0: अगर नहीं कमरा है तो आपका टेंट लगा हुआ है, टेंट में बैठ के भर लो।
1: क्या उसको जैसे वृक्ष खड़ा कोई उसकी छाया में भर सकते हैं? छाया में
0: नहीं, अपायरी से थोड़ा सा दूर होना चाहिए।
1: हाँ, वो तो दूर हो गया, लेकिन मान लो छाया
0: भर सकते हो
1: तो उसमें वृक्ष के नीचे
0: भर, हाँ भर लो, कोई ऐसी बात नहीं है
1: जी।
0: और साथ साथ ध्यान भी रखो, अगर कोई मक्खी आ रही है तो फिर आप थोड़ा चौकसी ज्यादा बरतो, और कोशिश तो यही करो कि टेंट है आपका तो टेंट में भर लो, और कोई कमरा है तो उसमें भर लो, और फिर इन फ्रेमों को लेके आप अपायरी से थोड़ा सा दूर रख लो
1: जी।
0: और एक एक फ्रेम या दो जो भी आधा फ्रेम या अलग अलग भर लो, मतलब जरूरत के हिसाब से, और वो मधुमक्खियों को दे दो। लेकिन जो हमारे मधुमक्खी पालक करते हैं वो ये करते हैं कि मोमी लिफाफे ले लेते हैं पॉलीथीन के, और दो तरह के होते हैं, एक तो जिनमें हम सामान लाते हैं हैंडल वाले, और एक बिना हैंडल वाले जो जिसमें ऊपर रबड़ लगा के वो बांधते हैं।
1: हाँ।
0: तो वो इस तरह का लेके दोनों तरह का यूज करते हैं वो। तो उसमें आप घोल डाल के और कोई दो चार कोई कांटा लेके खेत से या कागज को लगाने वाली पिन है तो उससे दो चार छिद्र एक साइड में कर दो।
1: अच्छा।
0: या नहीं भी करोगे तो मक्खियां कर लेंगी अपने आप।
1: अच्छा।
0: और उसको आप भर के अच्छी तरह से ऊपर से धागे मोटे धागे से बांध दो,
1: ठीक है,
0: ताकि बाहर ना निकले।
1: बाहर ना निकले वो जो होगा तो जैसे बांध के कई बार देते हैं उसी तरह बन जा।
0: हाँ जी,
1: दो तीन छिद्र उसमें ऑल पिन से कर दें।
0: हाँ जी, दो चार एक साइड में, दोनों साइडों में नहीं।
1: हाँ।
0: तो उसको आप जरूरत के हिसाब से, मतलब किसी में 250 ग्राम भर लिया, किसी में आधा किलो घोल भर लिया, किसी में 750 ml डाल लिया, किसी में 1 लीटर भी डाल सकते हो, मतलब मधुमक्खियों की क्षमता के हिसाब से। ऐसा नहीं करना कि उसको जरूरत तो है आधा लीटर की और आप दे दो 1 लीटर। तो उसी हिसाब से आप मक्खियों की जरूरत के हिसाब से, संख्या के हिसाब से आप अलग अलग लिफाफे तैयार कर लो। और ये एक एक मतलब लिफाफा जरूरत के हिसाब से आप डब्बे में तलपट्टे पे रख दो नीचे, क्योंकि गर्मियों में पूरे फ्रेम होते नहीं हैं डिब्बों में, और जो जगह साइड में बची हुई होती है उसमें आप तलपट्टे पे रख दो
1: जी।
0: और अगर मान लो पूरे के पूरे फ्रेम हैं और पूरी संख्या है मक्खियों की, तो आप मधुमक्खी जो फ्रेम है चौखटों की टॉप बार ऊपर वाली पट्टी है उस पर रख दो, और ऊपर एक खाली डिब्बा लगा दो।
1: अच्छा।
0: ताकि भाई इनर कवर अगर आप ऊपर रखोगे और इनर कवर जो भीतरी ढक्कन है वो लगाओगे तो वो थोड़ा सा उठा रहेगा, तो ये नहीं काम हमने करना। ऊपर एक खाली डिब्बा लगा के फिर उसके ऊपर इनर कवर लगा दो और फिर टॉप कवर लगा।
1: अच्छा।
0: दो। तो ये इस तरह से आपने चीनी का घोल आपने देना है।
1: अच्छा।
0: और इसमें जो काफी सावधानी बरतनी चाहिए घोल देने में, जैसा तो मैंने एक तो पहले ही बता दी कि घोल आपने दूर बनाना है अपायरी से,
1: वही रख देना है
0: और
1: उसको मान लो 1 किला दूर रख देना।
0: हाँ, वो भर के मतलब आप ले आओ।
1: हाँ।
0: और लगभग थोड़ा सा दूरी, जैसे मतलब आधा किला लगा लो, वो एक जना वहां से फटाफट फ्रेम पकड़ाता जाए और दूसरा डिब्बे में अपना डालता जाए।
1: अच्छा।
0: या लिफाफा है तो लिफाफा डालता जाए।
1: अच्छा।
0: मतलब ये काम भी आपने फुर्ती से करना है। और हमारे हिसाब से घोल देने का सही समय शाम को होता है, मधुमक्खी पालक दिन में ही दे देते हैं, ये कोशिश करें वो ना दें, क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी शाम को कौन दोबारा आएगा। लेकिन शाम को ही देना ठीक रहता है, क्योंकि उस समय जो है मधुमक्खियां सारी घर में आ जाती हैं डिब्बे में वापस, और लड़ाई का आपस में जो है वो खतरा कम रहता है। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आधे डिब्बों को आपने घोल दे दिया और आधों को नहीं दिया, तो एक बार आप सब डिब्बों को दे रहे हो तो सारों को दो, कम ज्यादा आप दे सकते हो, लेकिन ये है कि देना सबको चाहिए और शाम को देना चाहिए।
1: मान लो कोई खाली रह जाए तो फिर हो सकता है दूसरे उसकी मक्खी चली जाए उसमें, ये भी तो हो सकता है दूसरी कॉलोनी की मक्खी उसमें दूसरी में चली जाए, एक में दे दिया एक में ना दिया तो।
0: हाँ नहीं, उससे हाँ बिल्कुल आप यही कह रहे हो भाई, जो अगर मान लो आपने एक को दे दिया, अब उसमें घोल है और दूसरे के पास है नहीं तो वो चोरी करने फिर
1: चोरी करने
0: के पास जाएगी
1: जी।
0: तो जब पेट भरा हुआ है किसी का तो वो चोरी नहीं करता ना इसी तरह से, तो ये काम आपने नहीं करना और शाम को देना। और एक हमारे मधुमक्खी पालक जो कर रहे हैं गलत अप तरीका अपना रहे हैं, वो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई वो ये ना करें। वो क्या करते हैं, अपायरी जहाँ में उनके मधुमक्खियों के डिब्बे रखे हैं तो वो उसमें एक टब रख देते हैं और उसमें घोल बना के उसमें डाल देते हैं, तो ये बड़ा भारी नुकसान है इसका हमें।
1: अच्छा।
0: एक तो सबसे पहला नुकसान बड़ा तो ये है कि किसी मान लो डिब्बे में बीमारी है तो उसकी मधुमक्खियां भी वहीं घोल लेने आ रही हैं,
1: और ठीक वाली भी वहीं
0: और
1: आएंगे।
0: जो हेल्दी हैं स्वस्थ हैं उसकी भी मक्खियां वहीं आ रही हैं
1: जी।
0: तो वो आपस में संपर्क में आके बीमारी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैल जाती है
1: जी।
0: तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और दूसरा नुकसान इसका ये भी है कि आप देना तो चाह रहे हो अपनी मधुमक्खियों को घोल, खर्चा अपनी मधुमक्खियों के लिए कर रहे हो, और कोई अपायरी और किसी बी कीपर की भी है तो वो भी उठा के मक्खियां लेके जा रही हैं, और इसके अलावा जंगली मक्खी है जो पहाड़ी मधुमक्खी वो भी वहीं आ रही है, और उससे आपस में पहाड़ी मक्खी और ये मेलीफेरा मधुमक्खी की रोबिंग भी हो सकती है
1: जी।
0: तो ये काम मधुमक्खी पालकों से मैं अपनी सलाह देता हूँ और उन रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये काम वो ना करें
1: जी।
0: तो और घोल अपना बड़ा जो मैंने
1: जो बताया आपने, एक जो लिफाफा लेना उसमें दो चार जगह पिन लगा के हर एक डिब्बे वाइज उसको रखना, हर एक में रखना है।
0: हाँ जी जी,
1: जितने भी हमारी कॉलोनी हमने बना रखी
0: बिल्कुल
1: है।
0: जी बिल्कुल।
1: रही बात डॉक्टर साहब, देखो ये तो घोल हमने चाशनी की उससे दिया।
0: हाँ जी।
1: लेकिन कुछ हमारे जो मधुपालक भाई हैं वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे जहाँ पे फूल हो जाते हैं कई बार राजस्थान में या जो दूसरे स्टेट हैं उनमें भी ले जाते हैं, क्या वो तरीका सही है उनका? और ले जाएं तो फिर किस तरीके से उसको ले जाएं?
0: देखो ये बात मैं अभी कहने ही वाला था कि अगर आपके पास कोई ऐसा साधन है या ऐसी जगह है जहाँ तापमान कम है और मधुमक्खियों के लिए फूल भी जो जरूरी हैं वो हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप उसको माइग्रेट कर दो अपनी अपायरी को, बढ़िया तरीका है। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे हमारे हरियाणा में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी लगभग यही स्थिति होती है, तो फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं, अब जैसे हिसार के मुकाबले में पंचकुला में थोड़ा तापमान कम रहता
1: कम
0: है,
1: बिल्कुल।
0: और कुछ जंगलात के इलाके भी हैं वहाँ, तो उससे कुछ ना कुछ मधुमक्खियों को मिल जाता है। तो अगर आपको कोई ऐसी जगह अच्छी लगती है तो वहाँ स्थानांतरण आप कर सकते हैं।
1: कर सकते हैं, किस समय करें डॉक्टर साहब?
0: स्थानांतरण मधुमक्खियों का हमेशा या तो जी रात को करें या सुबह सुबह बिल्कुल सूर्य निकलने से पहले ही करें।
1: अच्छा।
0: और अपने गंतव्य तक आप सूर्य निकलने तक पहुंच जाएं। और रात को भी इसलिए भी कि अगर एक तो मौसम ठीक होता है, दूसरा ट्रैफिक नहीं होता, और तीसरा कोई लीकेज होगी आपके डिब्बे में, मक्खियां बाहर निकल आई हैं, तो वो राहगीरों को दिन में कोई होगा नहीं तो काटने का भी कोई चांस नहीं होता
1: जी। तो कोशिश करें कि भाई हम शाम के समय पर ही ले जाऊं।
0: हाँ जी, शाम को अपना पैक करके और सारी मक्खियां अंदर आ जाती हैं।
1: हाँ।
0: और अपना पैक करके और उनको ले जाओ।
1: तो इस तरह तो डॉक्टर साहब हमने ये ध्यान करना पड़ेगा, और क्या क्या इसमें सावधानी रख सकते हैं?
0: एक किस में एक एक चीज और है जो गर्मियों में हमारे किताबों में भी लिखा हुआ है और वैज्ञानिक हमारे सलाह भी देते हैं कि पराग का भोजन गर्मियों में, जो हमारा चीनी का घोल है उससे तो नेक्टर की पूर्ति हो गई और मकरंद की मतलब, और पराग का भोजन पराग की पूर्ति करने के लिए, ये मैं बता देता हूँ, लेकिन इसका मुझे ये बड़ी सावधानी से मधुमक्खी पालक दें, और अगर फायदा लगे उनको, मैं वैसे अपने निजी मेरे ये विचार हैं कि मैं इस भोजन की कम ही सिफारिश करता हूँ।
1: अच्छा।
0: क्योंकि होता क्या है, जब भोजन बना के आप देते हो, पहले मैं बता दूं भाई भोजन में क्या क्या मिलाना है। जैसे अगर मान लो आपने 1 किलो भोजन बनाना है, तो आप लगभग 400 ग्राम के बाद 400 ग्राम आप सोयाबीन का आटा या चने का आटा ले लो, महीन पीसा हुआ, बिल्कुल कपड़ छान किया हुआ, और उसमें 250 ग्राम चीनी पीसी हुई, कपड़ छान की हुई मिला लो, और 250 ग्राम सूखा दूध वो मिला लो,
1: सूखा
0: दूध जो बाजार में स्किम्ड मिल्क हम बोलते हैं जिसको,
1: अच्छा,
0: मिलता है वो मिला लो, और 50-100 ग्राम अगर आपके पास पोलन है तो वो मिला लो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, और एक बड़ा चम्मच माइक्रोबियल ईस्ट जो फफूंद को रोकने के लिए,
1: अच्छा,
0: वो मिला दो, और इसके बाद आप इसमें शहद डाल लो, और ये सूखे पदार्थ मिला के शहद डाल लो, और शहद को इसको आटे की तरह, जैसे हम घर में चपाती बनाने के लिए आटा
1: गूंथते हैं,
0: तो उस तरह इसको बना लो
1: जी।
0: और 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम जरूरत के हिसाब से, जैसे मैंने घोल का बताया, तो वो आप मतलब कॉलोनी की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा किसी मोटे कागज पे या किसी बर्तन में रख के आप कॉलोनी को दे दो।
1: दे सकते।
0: अब होता क्या है, मधुमक्खियां आती हैं एकदम और इसमें से शहद लेती हैं चूस, तो हमें ये लगता है कि भाई खा रही हैं, लेकिन फिर बाकी का भोजन जो है वो वहीं छोड़ देती हैं, और उसके उस भोजन वो थोड़ा एक 2-4 दिन बाद सूख जाता है, और उस पे चींटियां और आ जाती हैं, तो गर्मियों में संख्या पहले ही कम होती है और चींटियों की भी समस्या होती है गर्मी में, तो वो चींटियां और आ जाती हैं, और हमारी मधुमक्खियां कमजोर होती हैं उस समय, तो चींटियों की समस्या और होने से वो और कमजोर हो जाती हैं और अपना घर भी कई बार छोड़ सकती हैं
1: जी।
0: तो ये मैं मधुमक्खी पालकों को यही सलाह देता हूँ। अब कई बार आप चीनी का घोल दोगे, पराग का भोजन दोगे, तो रानी हो सकता है कुछ अंडे दे देगी, लेकिन वो अंडे आप देखो, और उनको देखो कि उनमें से जो शिशु निकलते हैं क्या वो पूरी मक्खी तक पहुंचते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा तजर्बा कहता है कि नहीं पहुंचते,
1: वो नहीं पहुंच पाएंगे।
0: आप उसका तरीका है पिन लगा दो चारों तरफ से कागज वाली और उन शिशुओं को देखो अंडे में से जो निकले हैं कुछ तो अंडे ही सूख जाएंगे और देखो अगर आपको लगता है अभी शिशु पूरी मक्खी निकल रही है तो आप दे देना भोजन, नहीं तो फिर मेरी बात मान लेना।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये तो देखो उसके खाने की सारी बात आपने बता दी।
0: हाँ जी।
1: एक मुख्य बात है कि जो पानी की व्यवस्था है वो हमारी कैसी होनी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा वो किया जो रह गई बात मेरे से। तो पानी की व्यवस्था गर्मियों में हमें मधुमक्खी के जो डिब्बे हैं हमारे अपायरी मतलब हमारी है तो उसके पास ही कर देनी चाहिए। और हमारा वैज्ञानिक तरीका तो ये कहता है कि एक तिपाया स्टैंड लो और उसके ऊपर एक मटका लेके उसकी तली में एक बारीक मतलब छेद करके उसमें मोटी बत्ती बना के और डाल दो।
1: अच्छा।
0: और उस मटके में पानी भर दो और स्टैंड के सहारे में एक फट्टा लकड़ी का वो और लगा दो,
1: वो उसको टेढ़ा करके लगा,
0: हाँ टेढ़ा करके।
1: हाँ।
0: तो उसमें जो है बत्ती से जो पानी निकलेगा,
1: हाँ।
0: तो या मधुमक्खियां बत्ती से भी चूस लेंगी और फट्टे पे भी गिरेगा तो वो फट्टे से आराम से
1: धीरे धीरे ले लेंगी,
0: धीरे धीरे ले लेंगी
1: जी।
0: तो स्वस्थ तरीका तो वैज्ञानिक जो हम सलाह देते हैं वो तो है ये। और मधुमक्खी पालक आमतौर पर जो करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। मधुमक्खी पालक या तो कोई मटका पुराना ले लिया, कोई गमला ले लिया, उसके नीचे जो छेद है उसको पॉलीथिन डाल के बंद कर दिया और उसमें पानी डाल दिया और उसमें फिर थोड़े तिनके डाल दिए और पत्ते डाल दिए, उससे मधुमक्खियां अपना उस पे बैठ के ताकि डूबे ना
1: ले लेती
0: और अपना पानी लेती रहती हैं। और पानी हमें बदलते रहना चाहिए। और अगर ये भी कई मधुमक्खी पालक नहीं करते तो एक छोटा सा गड्ढा खोद लेते हैं और उसके ऊपर पॉलीथिन बिछा देते हैं, पॉलीथिन बिछा के और उसमें पानी डाल देते हैं और फिर वही तुनके और
1: तिनके डाल
0: पत्ते
1: के,
0: डाल के ताकि उससे पानी ले ले।
1: पत्ते हैं तिनके हैं उनके ऊपर जो मधुमक्खी बैठ के वो पानी है वो आराम से ले सके।
0: लेकिन ऐसा फिर इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको आपने पानी को रोज बदलना है, ये नहीं कि हफ्ता आठ दिन वही पानी चलाते रहो।
1: उसको पानी को तो हर रोज बदलना पड़े ताकि जो मधुमक्खी है उनको ताजा स्वस्थ और अच्छा पानी मिल सके।
0: अच्छा
1: बहुत अच्छे और बढ़िया तरीके से जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई हैं उनके लिए जो आपने जानकारी दी डॉक्टर योगेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
2: यह तो भैया ने बातचीत सुन ली। ईब मनोरंजन का जिक्र है तो गायक कलाकार होंगे राकेश कलोया और उनके साथी।

यह तो भैया ने रागनी सुनी जिसके गायक कलाकार थे राकेश कुलैया और उनके साथी। और मौसम का जिक्र करा तो हाल के मौकम जो पूर्व अनुमान विश्वविद्यालय की तरफ तार है वो तो यो है कि मौसम ही बस साफ रहने की संभावना है। अगर कोई बदलाव होगा तो कल फिर बैठेंगे फिर बता देंगे। तो कृषि जगत कार्यक्रम का टाइम तो इतना ही, अगला कार्यक्रम रहेगा ग्रामीण संसार। आकाशवाणी का युरोत केंद्र है ये, भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार है। और ग्रामीण संसार में भैया का मनोरंजन भी करवाऊंगे, लेकिन उससे पहले जो जिक्र हम कृषि जगत कार्यक्रम में कर रहे थे जल का प्रबंधन, प्रबंधन में तो बात यह आवे है कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से करा जा, फिर बात आवे है जल का संरक्षण की, वो हमने बचाना भी है आने वाली पीढ़ियाँ खातर, चाहे वो पीने के योग्य हो, चाहे वो कृषि योग्य हो, चाहे वो किसी भी इस्तेमाल में लाने का है, जल हमने बचाना है। छोटे छोटे कुछ प्रयास हैं जो करके हम जल बचा सकें। एक तो भाई मान लो गाड़ी दो हैं वो थोड़ा सा कम पानी में भी काम चला सके हैं, इसी इसी मोटर से आ रही है प्रेशर से आ रही, वो जब उनका इस्तेमाल करें तो हो सके है आपकी गाड़ी एक दो बाल्टी में डूब जा। लेकिन भाई क्या करे हैं कि पाइप ला कर बस उसने चलाए रहे हैं, भाई कपड़ा मारे जाएंगे धोए जाएंगे, किसी दूसरा भाई आ गया उसकी गेल बतलाने लग जाएंगे, मन मन वो न्यू पूछ ले या कौन सा मॉडल से कितना तेल खाओ है, किसी की चाल है, कौन सी कंपनी की है, वो प्रचार करने लग जाएंगे। लेकिन न्यू नाली चालन लग रही है ना, गलत बात है, वो नाली का में जो पानी बहन लग रहा है वो गलत है। वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए हमने जो बचा कर रखना था हम उसने व्यर्थ कर रहे हैं। हाल में तो चलो हमने पानी मिल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यो कितने दिन चल लगा अगर हम इसने व्यर्थ इसी तरीके से बांधे रहे तो। ये हम उसने व्यर्थ बहाओगे तो वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर वो जाएगा खड़ा होगा वो सड़ेगा, उसमें बदबू उठेगी, वो नुकसानदायक साबित होगा, बीमारी होगी। हमने उतने पानी का इस्तेमाल करना है जितनी की जरूरत है। जिनके पास पानी नहीं है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जित पानी नहीं है, जमीन में पानी बहुत नीचे तक है, नहर इतनी ज़्यादा नहीं है, उन्हें पीने के पानी के बिलाले पड़ रहे हैं, तो उस जगह पर जाकर देखो, उन आदमियों ने पूछ कर देखो कि पानी की असली कीमत की है। और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है भाइयों यू, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। आदमी खाने के बगैर कुछ टाइम तक रह सके है, लेकिन पानी के बगैर तो ज़्यादा समय नहीं रहा जा सकता। यूँ कहें अगर भाई इसके बिना जीवन संभव नहीं है तो एक साचा डर है आने वाले टाइम में जब पानी की किल्लत माजगी कमी पड़ेगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। उस समस्या से बचने के लिए हमने इब्बत को छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे कि जितने पानी की जरूरत है उतने पानी इस्तेमाल में लियाएं, ज़्यादा पानी ना बहाएं, अपने बच्चों ने भी यह बात बताएं, पास पड़ोस का कोई भाई है इस तरह का काम कर रहा है तो उसने भी समझाएं, और जो ये सरकारी ठूठी लाग रही है या फिर अपने घर में है कोई भी है उसका अगर बंद करने का सिस्टम ना लाग रहा हो तो उसने बंद करने का जरूर लगा दे ताकि पानी व्यर्थ ना जा। चलो ये तो जल संरक्षण संबंधी बात थी, जिक्र आया था मनोरंजन का तो एक रागनी सुनेंगे जिसके गायक कलाकार होंगे आजाद सिंह खांडा खेड़ी वाले और उनके साथी।

यह तो भाई ने रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे आजाद सिंह खांडा खेड़ीवाले और उनके साथी। और ईब ग्रामीण संसार कार्यक्रम का समय वो है समाप्त। दलजीत भाई ने जा जद सारे बन भाइयों ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: government. Now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashvani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
2: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
3: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है, ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज़्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है, और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास,
2: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं,
3: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है, यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
2: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
3: बिल्कुल,
2: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में, तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
3: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है, और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज़ किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं, तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
2: सर्जरीज में भी इसकी काफी
3: बिल्कुल
2: उपलब्धि है,
3: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड, AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे AI कैसे मदद करता है कि AI टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, AI टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक CHO को ये तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या AI की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर

0: में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
1: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ENT की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और NCD की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है, और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
0: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
0: जी,
1: वो GDP का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है, तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
0: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने TB और COVID-19 का भी जिक्र किया, तो आज TB के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
1: देखिए, TB के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, TB एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है, राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जाँच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी

0: के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूँगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ COVID-19 की भी चर्चा करते हैं। COVID-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफ़ी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, COVID-19 पैंडेमिक पूरे दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है, तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। US हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है उससे कहीं ज़्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है, तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार।
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी ज़रूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

मुकेश की आवाज़ में ये था हिमालय की गोद में फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। लीजिए सुनिए अजनबी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। आनंद बख्शी ने इस गीत के बोल रचे हैं, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अजनबी फिल्म से ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़ थी। गीत के बोल रचे थे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत के बोल रचे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

अभिमन फिल्म से गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीत था सचिन देव बर्मन का। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कभी कभी फिल्म से। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल, संगीत है खय्याम का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में आपने सुना कभी कभी फिल्म का गीत। गीत के बोल रचे थे साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था खय्याम ने। लीजिए अब सुनिए कॉलेज गर्ल फिल्म से किशोर कुमार का गाया ये गीत, जिसे रचा है शिव कुमार सरोज ने, संगीत दिया है बप्पी लाहिड़ी ने।

दो कलियां इस फिल्म से गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत के बोल रचे थे साहिर लुधियानवी ने, संगीत था रवि का। लीजिए अब सुनिए खानदान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

खानदान फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत था रवि का। आइए अब सुनते हैं आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म का नाम है चलते चलते, अमित खन्ना के बोल, संगीत बप्पी लाहिड़ी का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में हमारे आज की कलाकार हैं बेगम अख्तर।

0: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं बेगम अख्तर।
1: कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार थी बेगम अख्तर। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। इसके बाद 9 बजे समाचार होंगे अंग्रेजी में। समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में

ये था आज के एक फिल्म से कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने लाल सिंह चड्ढा फिल्म के गीत। गीत रचे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया था प्रीतम ने। आकाशवाणी का इरौता केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। किस्सा है बंदेवी का, कलाकार हैं प्यारे लाल और साथी।

कन्या गवारा देख लियो।

0: धर्म
1: ओ कनक कुमारा देख लियो कनक कुमारा देख लियो।

not with your eyes.

给俺这口吃。

अरे जो दिशा रूप का चक्रकवरी दिशा रूप का चक्रकवरी हरे आत्म देव आवे हो अरे कोई निर्धन कर देती कोई धनवान बनावे अरे किसे किसे धनपति सिंह अरे पढ़ रहे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार थे प्यारे लाल और साथी, किस्सा था बनदेवी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: विद्वान श्री MSN मूर्ति,
1: श्री MV सुब्बारायडू और श्रीमती M जलजाक्षी के पुत्र श्री MSN मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती M जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री NCH कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री MSN मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री MSN मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री MSN मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, गटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहायक वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला।
0: Sri MSN Murthy's exposure to music began early. His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri MSN Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri NCH Krishnamacharyalu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri MSN Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri MSN Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri MSN Murthy has performed extensively in the country and abroad in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri MSN Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
1: विद्वान श्री MSN मूर्ति आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
0: श्री MSN मूर्ति बिगिंस दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाणा रागम खंड चापू तालम।

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। इसके बाद 11:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और

0: मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।